0: सभा की शुरुआत अनमोल विचार के साथ।
1: आशावादी दृष्टिकोण का प्रयोग आप अपनी प्रगति के लिए कर सकते हैं, अपनी सफलता के लिए कर सकते हैं। हम निराश हो जाएं तो सफलता को पाने का हमारा लक्ष्य भी धूमिल हो जाता है। यदि हम में आशा है तो हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद की एक किरण भी शेष हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। बस जरूरत है तो हमें हर एक काम में आशावादी रहने की।
0: अनमोल विचार अभी आप सुन रहे थे और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में पहले लीजिए सुनिए एक मातृ वंदना।

0: अशोक खोसला के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 5:55 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करते हैं धान में लगने वाले कीड़े तना छेदक, गल मक्खी और भूरा फुदका।

0: के संदर्भ में। पहले बात करते हैं तनाछेदक कीट के बारे में। ये कीट धान की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट की सुंडियां तने के केंद्रीय भाग को खाती हैं तथा इससे तना सूख जाता है। इस सूखे तने को मृत मध्य भाग या डेड हार्ट कहते हैं। यदि इस कीट का आक्रमण पुष्पगुच्छ कलिका विकसित होने के बाद होता है तो इसका परिणाम ये होता है कि सूखी हुई बालियां बाहर निकलती हैं। इसे सफ़ेद बाली या वाइट हेड कहते हैं। ऐसी बालियों में दाना नहीं होती। इस कीट के आक्रमण के कारण उपज में काफ़ी गिरावट होती है। आइए देखें कि तनाछेदक का प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि फसल कट जाने के बाद खेत में फसलों के अवशेषों को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इन्हें साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि इन अवशेषों में तनाछेदक के अंडे अथवा कीट की अन्य अवस्थाएं पनप सकती हैं। किसान भाइयों, जब आप नर्सरी से मुख्य खेत में पौधों की रोपाई करते हैं, उस समय पौध का ऊपरी भाग काट कर अलग कर देना चाहिए, क्योंकि नर्सरी अवस्था में अगर तनाछेदक का प्रकोप होता है तो इस कीड़े के अंडे पत्तियों के ऊपरी सिरे पर रहते हैं। इस भाग को काट कर अलग कर देने से मुख्य खेत में इस कीट का प्रकोप कम होता है। जैविक नियंत्रण परजीवी ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम का 20,000 से 40,000 अंडे का प्रयोग प्रति एकड़ की दर से अगर करें तो इससे भी इस कीट का नियंत्रण होता है। इसके लिए आप ट्राइकोकार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। रात के समय प्रकाश प्रपंच के प्रयोग से आप कीड़ों को नष्ट कर सकते हैं। रासायनिक नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरॉन अथवा फोरेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए बात करते हैं भूरा फुदका कीट की। इस कीट के निम्फ व प्राउड दोनों ही भूरे रंग के होते हैं। ये कीट पौधों के कल्लों के बीच में जमीन की सतह से कुछ ऊपर तथा पुराने पर्णछत के भीतर पाए जाते हैं। इनको प्रातः एवं शाम के समय आसानी से देखा जा सकता है। ये कीट काफ़ी सक्रिय होते हैं और काफ़ी फुर्तीले होते हैं। ये तनों का रस चूसते हैं, जिसके कारण पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। इनका आक्रमण लगभग दुधिया अवस्था तथा दाने भराव के समय होता है। इनके रस चूस लेने के कारण दाने खाली रह जाते हैं। अधिक प्रकोप के समय पौधे गोलाई में झुलस जाते हैं। जहाँ तक इनके प्रबंधन का सवाल है, तो इसके लिए आप खेत में पानी का भराव ना होने दें। खेत की तैयारी करते समय 2 से 3 मीटर फासले पर आधा मीटर का रास्ता छोड़ें। नीम पर आधारित कीटनाशक का छिड़काव आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि पौधों पर 5 से 10 कीट प्रति पौधा दिखाई दें, तब आप कार्बरिल 0.3 किलोग्राम क्रियाशील अवयव अथवा दानेदार कार्बोफ्यूरॉन 3G 0.25 किलोग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़कें या बुरकें। बुरकाव करते समय खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी अवश्य रहना चाहिए। किसान भाइयों, भूरा फुदका कीट के बाद आइए बात करते हैं गौल मक्खी की। इसे पिटिका कीट भी कहते हैं। ये कीट फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इस कीड़े की सुंडियां नुकसान पहुंचाती हैं। सुंडी द्वारा खाए जाने के कारण पौधों के नियमित कल्ले नलिकार पिटिकाओं का रूप धारण कर लेते हैं। बाद में ऐसे कल्ले सूख जाते हैं और इन पर बालियां नहीं आती। इस कीट का प्रकोप पौध अवस्था से ही शुरू हो जाता है। अब जहाँ तक इसके प्रबंधन का सवाल है, तो किसान भाइयों, रोपाई से पहले धान की पौध का 0.02% क्लोरपाइरिफॉस घोल से उपचार करें तथा कार्बोफ्यूरॉन या फोरेट दानेदार दवा का प्रयोग 0.6 किलोग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से नर्सरी में पौध उखाड़ने से 5 दिन पहले करें। इस उपचार से धान की फसल की प्रारंभिक अवस्था में गल मक्खी से रक्षा हो जाती है। किसान भाइयों, खड़ी फसल में कार्बोफ्यूरॉन या फोरेट या क्लोरपाइरिफॉस दानेदार दवा का छिड़काव आप कर सकते हैं। इन दवाओं के प्रयोग से नाशी जीवों के प्राकृतिक शत्रुओं को कोई नुकसान नहीं होता और ये सुरक्षित रहते हैं।
1: एग्री टिप्स, अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं और अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती।

0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन।

जयपुर के लिए बुधवार 29 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। वापसी बृहस्पतिवार 30 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कैंबल बे लिटिल अंडमान के लिए मंगलवार 28 तारीख को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। इस जहाज की वापसी उसी रोज रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार के लिए 1 अगस्त को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जहाज 2 अगस्त को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा।

एम वी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और दोपहर बाद 1 बजे ये जलयान शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा इसकी वापसी आज ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एम वी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा तथा ये जलयान आज ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी बाराटांग आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप के लिए आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। वापसी कल सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एम वी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल यानी 28 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं स्थानों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एम वी रंगत शहीद द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी होगी सुबह 8:30 पर। स्वराज द्वीप के लिए एम वी नॉर्थ पैसेज कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एम वी बम्बुका कल दिन में 11 बजे शहीद द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा इसकी वापसी स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए कल ही दोपहर बाद 2:30 पर होगी। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एम वी जॉली बॉय कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा तथा ये जलयान कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। शहीद द्वीप के लिए एम वी हडबी कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जहाज की वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी और एम वी बाराटांग कल शाम 5 बजे स्वराज द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जहाज अगले दिन यानी 29 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। श्रोताओं, अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:15 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सोनिया का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम को हमने सजाया है जुदाई शीर्षक

के चुनिंदा गीतों से। शुदा जुदाई सिर्फ दूरियों का नाम नहीं, ये उन यादों का नाम है जो हर पल किसी की कमी महसूस कराती है। जुदाई हमें सिखाती है कि किसी की मौजूदगी की कीमत उसके दूर जाने के बाद ही समझ आती है।

श्रोताओं, जुदाई की घड़ी भले ही छोटी हो मगर उसकी यादें बहुत लंबी होती है। जुदाई एक ऐसा सफर है जिसमें इंसान अकेला चलता है और यादें उसके साथ चलती हैं।

0: श्रोताओं, आज के इस इंद्रधनुष कार्यक्रम से अब सोनिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी सोनिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह की 6:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की 312वीं कड़ी।

अपनी राजसभा में अंगद की चेतावनी और चुनौती सुनकर रावण के क्रोध की सीमा न रही। उसे लगा कि ये मूर्ख वानर ये नहीं जानता कि कुंभकर्ण जैसा वीर उसका भाई और इंद्र को परास्त करने वाला योद्धा मेघनाथ उसका पुत्र है। वानरों की सहायता से समुद्र पर सेतु बांध लेने से राम की किस वीरता का परिचय मिलता है? समुद्र तो पक्षी भी लांग जाते हैं। अपने हाथों अपना सिर काटकर शिव के समक्ष अग्नि में होम कर देने वाला वीर अन्यत्र कौन है? रावण अपने बल और पराक्रम की गाथा सुनाते हुए कहता है, मेरी भुजाओं के बलरूपी समुद्र में कितने ही देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। अब कौन ऐसा शूरवीर है जो इनकी अथाह गहराई को पार कर सके? यदि तेरा स्वामी इतना ही बलशाली है तो फिर दूत क्यों कर भेजता है? शत्रु की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते उसे लज्जा का अनुभव नहीं होता? इन भुजाओं को देख, जिनसे अपना सिर काटकर मैंने होम कर दिया था। अंगद बोले, सिर काटकर होम कर देना एक मायावी द्वारा रचित इंद्रजाल का कर्तव्य है।

0: अभी आप महेंद्र कपूर और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ों में रामचरितमानस गान की 312वीं कड़ी सुन रहे थे। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। लीजिए अब सुनिए जेम्स ऑफ इंडिया। डिजिटल मंच पर भारत की अनमोल कहानियों को मिलेगी नई पहचान पर समाचार वार्ता। लेखक और वाचक हैं चित्रकांत शर्मा।
1: भारत की असली पहचान उसकी सांस्कृतिक विविधता, समृद्ध विरासत और अनगिनत स्थानीय कहानियों में बसती है। देश का हर जिला अपनी परंपराओं, लोक संस्कृति, पर्यटन, इतिहास और विशिष्ट उपलब्धियों के कारण एक अलग पहचान रखता है। आज जब डिजिटल माध्यम दुनिया को जोड़ने का सबसे सशक्त साधन बन चुका है, तब इन स्थानीय कहानियों को वैश्विक मंच तक पहुँचाने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। इसी उद्देश्य को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के पायलट चरण का शुभारंभ किया है। शूट, अपलोड, शाइन की प्रेरक भावना के साथ शुरू की गई यह पहल देश के जमीनी स्तर के डिजिटल रचनाकारों को पहचान देने, उनकी प्रतिभा को निखारने और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को डिजिटल माध्यम से दुनिया तक पहुँचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। भारत सरकार रचनात्मक उद्योगों को सशक्त बनाने और तेजी से विकसित हो रही ऑरेंज इकोनॉमी को नई गति देने के लिए

0: लगातार कार्य कर रही है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज उसी दिशा में एक राष्ट्रीय पहल है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने तकनीक को केवल सुविधा का माध्यम नहीं बल्कि सशक्तिकरण, समावेशन और राष्ट्र निर्माण का प्रभावी साधन बनाया है। आज देश का युवा अपने मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को नई पहचान दे रहा है। जेम्स ऑफ इंडिया इसी डिजिटल परिवर्तन को मजबूत करने की दिशा में एक नई शुरुआत है। यह अभियान सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रारंभ किए गए वेव्स ओटीटी के अंतर्गत विकसित माई वेव्स सिटीजन क्रिएटर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। माई वेव्स एक ऐसा मंच है जहां नागरिक अपनी मौलिक डिजिटल सामग्री तैयार कर उसे साझा कर सकते हैं। इसके माध्यमों से प्रतिभागी अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक परंपराओं, इतिहास और विशिष्ट उपलब्धियों पर आधारित 1 से 3 मिनट की प्रामाणिक डिजिटल कहानी प्रस्तुत कर सकेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने इस पहल को भारत की सांस्कृतिक शक्ति से जोड़ते हुए कहा, भारत के हर जिले में एक ऐसी कहानी छिपी है जिसे सुनाए जाने का इंतजार है और जेम्स ऑफ इंडिया उन कहानियों को दुनिया के सामने लाने का मंच प्रदान करेगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक रचनाकार माई वेव्स प्लेटफॉर्म पर 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। शूट, अपलोड, शाइन संदेश के साथ प्रतिभागियों को 1 से 3 मिनट का वीडियो तैयार कर अपलोड करना होगा जिसमें उनके जिले की विशिष्ट पहचान प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की गई हो। इस पहल का पायलट चरण फिलहाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा तथा लद्दाख में प्रारंभ किया जा रहा है। इसका संचालन प्रसार भारती, माई भारत, संबंधित राज्य और जिला प्रशासन के सहयोग से किया जाएगा। स्थानीय सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा ताकि प्रतिभाशाली युवाओं को संगठित करने और गुणवत्तापूर्ण सामग्री तैयार करने में आवश्यक सहयोग मिल सके। राज्य और जिला प्रशासन रचनाकारों को संगठित करने से लेकर निर्णायक मंडलों के माध्यम से मूल्यांकन तक पूरी प्रक्रिया का संचालन करेंगे। इस अभियान को व्यापक स्वरूप देने के लिए मंत्रालय ने यूट्यूब और मेटा जैसी अग्रणी डिजिटल कंपनियों को भी भागीदार बनाया है। प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए इस प्रतियोगिता में 3 स्तरों पर पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं। जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में अधिकतम 20 पुरस्कार प्रत्येक 50,000 रुपए के होंगे। इसके बाद प्रत्येक जिले से चुने गए एक उत्कृष्ट रचनाकार को राज्य स्तर पर 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर चयनित श्रेष्ठ प्रविष्टियों को 5 लाख रुपए तक के प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पारदर्शी और निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर निर्णायक समितियों का गठन किया जाएगा। इन समितियों में संस्कृति, विरासत, पर्यटन, मीडिया और शिक्षा जगत की प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल होंगी जो गुणवत्ता, मौलिकता और विषय वस्तु के आधार पर प्रविष्टियों का मूल्यांकन करेंगी। यह पहल केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि भारत की स्थानीय पहचान को डिजिटल युग से जोड़ने का एक राष्ट्रीय अभियान है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता है और उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज इस विश्वास को और मजबूत करता है कि देश का प्रत्येक नागरिक अपनी रचनात्मकता के माध्यम से अपने क्षेत्र की पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।
1: श्रोताओं, अभी आप जेम्स ऑफ इंडिया डिजिटल मंच पर भारत की अनमोल कहानियों को मिलेंगी नई पहचान पर समाचार वार्ता सुन रहे थे। लेखक और वाचक थे चित्रकांत शर्मा। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह की 6:45 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए वतन के गीत।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, जबकि मछुआरों को बताया गया है कि खराब मौसम के कारण तेज हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को आज समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। कल शाम तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 7 सुनिए जन सूचनाएं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का समय रहेगा 7:05। 7:15

नेट पर विविध भारती मुंबई से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ठीक उसी समय प्राइमरी चैनल पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम देश रागिनी। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर गुड मॉर्निंग अंडमान में सुबह 7:30 पर कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान आप सुन पाएंगे। कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत सुबह 8:30 कलाकार होंगे अनुराधा पौड़वाल और जसवंत सिंह। आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के तहत अली अहमद हुसैन व साथियों का शहनाई वादन आप सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल सवेरे 10:00। दिन में 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1336वीं कड़ी आप सुन पाएंगे। आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम एक ही कलाकार का दिन में 11:30 पर जिसमें KS चित्रा के गाए कुछ गीत सुनवाए जाएंगे। तेलुगु कार्यक्रम दोपहर 12:00 जिसके तहत फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गाना लहरी। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर जानकारी दी जाएगी। दोपहर 1:10 पर समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिलमिल गाए। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम दोपहर 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारे कार्यक्रमों की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे जिसके तहत 2:30 पर लाइव फोन आउट प्रोग्राम होगा हेलो डियर फ्रेंड्स तथा 3:30 पर सुनिए फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ जिसमें सूचनाओं के अलावा एरोंग विलेज के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत सुनवाए जाएंगे। शाम 4:30 पर सुगम संगीत के तहत आप घनश्याम वासवानी को सुन पाएंगे। शाम 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम शाम 5:00 जिसमें CRPF रेजिंग डे पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कुछ फास्ट बीट सॉन्ग सुनवाए जाएंगे। 5:30 बांग्ला कार्यक्रम में सुनिए आधुनिक गान। कृषि जगत कार्यक्रम संध्या 6:00 जिसमें डॉक्टर सुभाष पालवे से बातचीत का विषय रहेगा पशुओं में लीवर फ्लूक। 6:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा पॉप मसाला। मौसम की जानकारी जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं 7:15 पर। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युववाणी के तहत 7:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशां तथा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर जानकारी दी जाएगी। आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का रात्रि 8:15 पर। 8:30 आप सुनेंगे रोजगार समाचार और गौरव गान। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8:00 संसद समीक्षा, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम तथा रात्रि 10:00 संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि रात 10:00 100.9 विविध भारती FM पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह की 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: निदेशकः तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्षः एस सोमनाथः, आईआईटी चेन्नई इत्यस्य पूर्व निदेशकः वी कामकोटिः, पूर्व शिक्षा सचिवा अनीता करवालः तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञः अमितलाल मीणा च सदस्याः भविष्यन्ति। एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् एतत् कार्यबलं परीक्षा व्यवस्थायाः सुदृढीकरणे विशेषं ध्यानं प्रदास्यति। तस्य अनुशंसानाम् आधारेण भावि परीक्षाणां विश्वसनीयतां सुनिश्चेतुम् आवश्यकोपायाः यथाशीघ्रं क्रियन्ते। तेन एतदपि उक्तं यत् परीक्षा सम्बद्धानाम् अनियमिततानां निवारणाय कठोर प्रावधानयुक्तं नूतन विधेयकं प्रशासनम् अद्य संसदि प्रस्तौति।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
0: प्रशासनम् अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतस्य विधेयकस्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमं 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह एतद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। गत शुक्रवासरे केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोगस्य प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिभ्यः कठोरतर दण्ड विधानं च सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकं अनुमोदितम्। केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी शिक्षामन्त्रिणः कार्यभारं अधिगृहीतवान्। धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं गत शनिवासरे सः अस्मिन् पदे नियुक्तः। श्रीजोशी स्ववर्तमान मन्त्रालयैः सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि निर्वहिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः उक्तवान् यत् पाकिस्तानदेशेन सह कापि वार्ता न भविष्यति। भारतस्य सम्पूर्णं ध्यानं केवलं पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मूकश्मीरप्रदेशस्य भागं पुनः प्राप्तौ एव भविष्यति।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: रक्षामंत्री ह्यः लद्दाखस्य द्रासनगरे 27वें कारगिल विजय दिवस समारोहं संबोधयन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली महिला आयोगस्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य च निर्माणं कृतम्। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोगस्य अध्यक्षा नियुक्ता, तया सह श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सरनिका शर्मा झा च रेणु बल्ला सदस्यत्वेन नियुक्ताः। निर्मल जैन इत्येषः दिल्ली अल्पसंख्यकायोगस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका ईरान देशौ द्वितीय दिने आक्रमणानि स्थगितवन्तौ, येन प्रायः सप्ताहद्वयानन्तरं वर्धमानस्य सैन्याक्रमणस्यानन्तरं अन्तरिम युद्धविराम विषये पुनः वार्तालापस्य सम्भावना समुत्पन्ना। संयुक्तराष्ट्रसंघस्य अमेरिकादेशस्य राजदूतः माइक वॉल्ट्ज इत्येषः ह्यः अवदत् यत् राष्ट्रपति ट्रम्पः कूटनीतेः अवकाशं प्रददाति। ग्लास्कोनगरे प्रचलितासु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु महिलानाम् 48 किलोग्राम स्पर्धायां भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानू इत्येषा स्वर्णपदकं विजितवती। इति वार्ताः।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं जन सूचनाएं। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा 1.8 मिलीमीटर हुई। आज सवेरे 5:30 मिनट

पर सापेक्ष आर्द्रता 84% और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्रीविजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.5 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 5:06 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:46।

और अब एयर इंडिया से प्राप्त सूचना, दिल्ली से आ रहा विमान 2937 दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए विमान संख्या 2936 11:40 पर अपनी वापसी उड़ान भरेगा।

एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

0: जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नशा मुक्त अभियान के तहत आज से डीसी एसपी कप अंतर ग्राम वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से 30 जुलाई को कालापानी ट्रेल हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यातायात पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ प्रवर्तन अभियान चला रहा है और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। नशा मुक्त अभियान के तहत दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त की ओर से दक्षिण अंडमान पुलिस अधीक्षक, खेल एवं युवा मामले निदेशालय, शिक्षा निदेशालय तथा माई भारत के सहयोग से DC SP कप अंतर ग्राम वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन करेगा। ये चैंपियनशिप आज से 8 अगस्त तक फरारगंज पंचायत, श्री विजयपुरम, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लिटिल अंडमान में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए आयोजित होगा। द्वीप समूह के इतिहास में पहली बार नशा मुक्त अभियान के तहत इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें कुल 31 टीमें भाग लेंगी। विजेता टीमों को नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कला एवं संस्कृति विभाग इंटेक अंडमान निकोबार चैप्टर के सहयोग से श्री विजयपुरम और

0: में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
1: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
0: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
1: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
2: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
3: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
0: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा

0: विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब आईटी नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Government to introduce Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha today. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges all MPs to participate in discussion on exam reform bill. Prime Minister Narendra Modi announces formation of high-powered task force led by technology expert Nandan Nilekani. Prime Minister urges young people to strengthen their connection with India's border villages, describes developed villages as foundation of Viksit Bharat. IMD forecasts very heavy rainfall in Odisha and Chhattisgarh today. And India's weightlifting queen Meerabai Chanu wins third successive Commonwealth Games gold medal in women's 48kg category. Rishikant Singh bags silver in men's 60kg class. And now the news in detail. The government will introduce

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

श्रोताओं, इस समय आप आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। समय बता दें आपको, इस समय सुबह की 8:50 हुए हैं। कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह की आवाज़ों में गज़ल।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के फनकार थे अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह। और इसी के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म राजा रानी से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, बोल आनंद बख्शी के हैं व धुन तैयार की राहुल देव बर्मन ने।

0: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
1: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
0: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
0: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
1: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
0: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
1: धन्यवाद दीदी।
0: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल YouWin पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.youwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप जानते हैं कि HIV पॉजिटिव लोगों के मानवाधिकारों और वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अब देश में एक नया कानून है, HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। 10 सितंबर 2018 को लागू किए गए इस एक्ट में HIV पॉजिटिव लोगों को उनका हक दिलाने और उनकी गरिमा व आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इस एक्ट के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि HIV पॉजिटिव लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए। किसी भी इंसान को उसका HIV स्टेटस बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। इस एक्ट की वजह से अब किसी को भी नौकरी पर रखने से पहले उसका HIV टेस्ट कराना या HIV स्टेटस पूछना और बताने के लिए दबाव बनाना दोनों कानूनन अपराध है।

किसी भी इंसान की HIV टेस्ट के समय प्री और पोस्ट HIV काउंसलिंग करना जरूरी है और साथ ही उसकी सूचित सम्मति लेना भी जरूरी है।

श्रोताओं, ये था मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में सुहाग फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आन मिलो।

शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में अभी आपने सुना कूली फिल्म का गीत बोल आनंद बख्शी की थे व धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म रोटी का एक गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए फिल्म चरस के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तरानी सुहानी अब यहीं समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको उस्ताद अली अहमद हुसैन और उनके साथियों का शहनाई वादन सुनवाएंगे। ये प्रस्तुति हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रातःकालीन राग तोड़ी पर आधारित है। आइए सुनते हैं उस्ताद अली अहमद हुसैन और साथियों का ये मनोहरी शहनाई वादन।

श्रोताओं, अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अली अहमद हुसैन और साथियों का शहनाई वादन सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं मुन्ना माइकल फिल्म के एक गीत के साथ। इस गीत को आवाज़ दी है अमित मिश्रा और अनंत मिश्रा ने।

अगला गीत हमने लिया है बाहुबली 2 फिल्म से, बोल मनोज मुंतासिर के हैं। इस गीत को स्वर दिया है मधुश्री ने।

अब प्रस्तुत है अरिजीत सिंह की आवाज़ में एक गीत। प्रीतम के संगीत निर्देशन में तैयार इस गीत को सुरों में पिरोया है इरशाद कामिल ने। फिल्म का नाम है जब हैरी मेट सेजल।

अब प्रस्तुत है अरिजीत सिंह की आवाज़ में एक गीत। प्रीतम के संगीत निर्देशन में तैयार इस गीत को सुरों में पिरोया है इरशाद कामिल ने। फिल्म का नाम है जब हैरी मेट सेजल।

0: अब लीजिए सुनिए बादशाह फिल्म का एक गीत। संगीतकार है तनिष बगची, गायक कलाकार हैं जुबिन नौटियाल, नीति मोहन। इस गीत को बोल लिखे हैं मनोज मुंतासिर ने।
1: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स।

इस कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं अ जेंटलमैन फिल्म से। इसे गाया है सिद्धार्थ बसरूर और प्रिया सरालिया ने। संगीत सचिन जिगर का है तथा बोल लिखे हैं प्रिया सरालिया ने।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa.
2: अगला गीत सुनते हैं लखनऊ सेंटर सेंट्रल फिल्म से। इस गीत को आवाज़ दी है अमित मिश्रा और नीति मोहन ने। इस गीत को संगीत से सजाया है रोशक कोहली ने तथा बोल आदेश वर्मा के हैं।

आप सुनते हैं सचिन जिगर के संगीत निर्देशन में तैयार एक गीत। इसे गाया है सुनिधि चौहान और आदेश श्रीवास्तव ने, बोल प्रिया सराइया के हैं।

अब पेश है भूमि फिल्म का एक गीत। संगीत है सचिन जिगर का, बोल प्रिया सरायया के है। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है राहत फ़तेह अली खान ने।

श्रोताओं, अभी आप अनु मलिक और नेहा कक्कर की आवाज़ों में गीत सुन रहे थे। संगीत अनु मलिक का था तथा बोल देव कोहली के थे। अगला गीत सुनते हैं चीफ फिल्म से। इस गीत को गाया है शाहिद मालिया, संगीतकार है रघु दीक्षित तथा बोल है अंकुर तिवारी के।

श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं फितूर फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़ों में। संगीत है अमित त्रिवेदी का तथा बोल लिखे हैं श्रीकांत किरकिरे ने।

श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं बरेली की बर्फी फिल्म से। इसे गाया है देव नेगी ने और पवन पांडे ने। संगीत तनिष बख्ची का है तथा बोल लिखे हैं शबीर अहमद और प्रवेश मलिक ने।

अगला गीत सुनते हैं मुन्ना माइकल फिल्म से। इस गीत को गाया है सिद्धार्थ महादेवन ने, बोल कुमार के हैं तथा धुन बनाई है तनिष बगची ने।

0: अगला गीत सुनते हैं भूमि फिल्म से। इस गीत को आवाज़ दी है दिव्या कुमार और जोनीता गांधी ने। संगीत सचिन जिगर का है तथा बोल तैयार किए हैं अन्विता दत्त ने।
1: हेलो हेलो, 1 2 3 चेक। होने वाले मियाँ के तारीफों के पुल बांध रहे हैं, होने वाले मियाँ के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बारात कम लगता है, खुले सांड खड़े हैं। ऐसे भी क्या हीरे जड़े हैं, दर्शन छोटे बस नाम बड़े हैं।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1336वीं कड़ी।

0: पतंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, घबराए नहीं। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर मदन महल के पीछे अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं, दिनांक 6/7/2026 को प्रसारित किया गया उमंग प्रोग्राम का श्रोता संवाद मुझे बेहद पसंद आया, जिसमें प्रोफेसर विनोद जी द्वारा परीक्षा के दौरान बच्चों पर होने वाले तनाव को कैसे कम करें इस विषय पर जानकारी दी गई है।
2: ये हमें बेहद पसंद आई और दिनांक 7 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 का उमंग प्रोग्राम भी बेहद पसंद आया, जिसमें आपने ये भी जानिए कि अंतर्गत पेड़ों के बारे में जानकारी दी। हमें बेहद अच्छी लगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए पूरी उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कारिया जी। अगला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, इन दिनों पेड़ों के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक जानकारी हमें सुनने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है। इन दिनों सचमुच मजा आ रहा है। धन्यवाद जी।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। 9 जुलाई दिन गुरुवार को आपने 5000 साल तक जीने वाले पेड़ के बारे में जानकारी दी। ये हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। विमलेश जी और अजीत जी को हमारा नमस्कार।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। और साथ साथ
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
3: जय गुरुदेव।

0: उमंग टीम को जय जोहार, पल पल बंदगी। 29 जून 2026 को उमंग में आदिवासी परिवार की कहानी बुधनी गई है जंगल कार्यक्रम सुनाया, जो हमें बहुत पसंद आया और पर्यावरण को बचाने की सीख भी हमें मिली। आपका उमंग कार्यक्रम स्वर्ग की तरह सुंदर है, सभी सुनने वालों को स्वर्ग की तरह अनुभूति कराता है, जीवन को खुशनुमा बना देता है। विमलेश मैडम जी और अजीत साहब जी को जय जोहार बंदगी करते हैं, धन्यवाद साहब
1: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा और पायल कुमारी,
0: और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का आप सबको धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
1: इसका उत्तर है साथियों, मोबाइल या सेल फोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1973 में किया था।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जॉन बील मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। इस मेले में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, हमने पूछा था आपसे कि मोरुंग किसे कहते हैं।
1: इसका उत्तर है मोरुंग नागालैंड का पारंपरिक युवा आवास है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। यहाँ युवाओं को संस्कृति, आखेट, कला और युद्ध की शिक्षा दी जाती है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था श्रोताओं कि बहा उत्सव में कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: संथाल जनजाति के इस उत्सव में साल यानी सखुआ और महुआ के फूल चढ़ाए जाते हैं।
0: जी, और सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न, हमने पूछा था कैल पौध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैल पौध शब्द का क्या अर्थ है।
1: इसका उत्तर है साथियों, कैल का मतलब हथियार या उपकरण होता है और पौध का अर्थ होता है उत्सव यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। ये कर्नाटक की कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब बारी है आज का प्रश्न सुनने की। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: जी, तो श्रोताओं अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो पहला कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसका शीर्षक है चेतक की वीरता।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीतमय प्रस्तुति है, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महायोद्धा वीर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की चपलता, स्वामी भक्ति और वीरता का बखान किया गया है। कविता के द्वारा बच्चों के मन में जीव जगत के प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी जागृत करने का प्रयास किया गया है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चेतक की वीरता। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है अंगुलीमाल।
1: ये कार्यक्रम महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के मृदुभाव और विनम्रता से किस प्रकार उस समय के दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन

0: में अंगुली माल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत निर्दयी था। वो जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था।
1: ए, जो कुछ है रख दो यहाँ।
0: वो उन्हें मार डालता था। वो उनकी अंगुलियों की माला बनाता था। उस माला को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुली माल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुली माल के बारे में सब कुछ बताया।
2: नाथ,
3: महात्मा,
2: प्रभु,
3: महात्मा,
4: प्रभु, प्रभु, अब जंगल में मत जाएं।
5: वहाँ अंगुली माल है।
4: हाँ प्रभु।
5: वो बहुत बड़ा डाकू है।
6: हाँ प्रभु, आप वहाँ ना जाएं।
2: जाए।
6: हाँ प्रभु, वो डाकू लोगों को मार देता है।
4: ना जाए प्रभु।
7: डरने की कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखें।

0: महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया।
1: कौन कौन है वहां?
0: वो गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया।
2: स्वागत है बंधु, आपका इस जंगल में परम स्वागत है।
3: अरे मेरा स्वागत।
0: इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा,
2: भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्ते तो तोड़ लो।
1: ठीक है।

0: तुमको जहां से तोड़ लाए हो फिर से वहीं लगाओ।
1: ये कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वो फिर कैसे जुड़ सकता है?
0: तो तुम जानते हो कि जो एक बार टूट गया वो दोबारा जुड़ता नहीं।
1: जी जी महात्मा।
0: तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते?
1: जी

अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया। वो उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया।

0: मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे।
1: कल्याण हो, आयुष्मान भव।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अंगुलीमाल। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
3: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
4: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
3: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
4: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
3: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
2: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
3: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
2: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
3: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
5: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
3: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
5: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचना

0: और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
0: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
0: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
0: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी।
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी।
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
0: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
0: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
0: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
0: कुलपति महोदय,

0: जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
1: जी,
0: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
1: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर पुलके।
0: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
1: जी, उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
0: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं है, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
1: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुलके को जानने लगी।
2: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुलके का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
0: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
2: फादर कामिल बुलके ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1949 में राम कथा पर डी फिल करने के बाद तुलसीदास के रामचरितमानस का और गहन अध्ययन किया। उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की।
1: डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा कहते हैं,
3: इस शोध ग्रंथ को वास्तव में राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जा सकता है। हिंदी क्या किसी भी यूरोपीय अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
1: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुलके ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
2: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुलके बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। कामिल बुलके की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी

0: भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र दो पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
1: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
2: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1336वीं कड़ी सुन रहे थे। इस समय घड़ी में 11:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज इस अंक में हम आपके लिए सुप्रसिद्ध गायिका KS चित्रा की मधुर आवाज़ में चुनिंदा हिंदी फिल्म गीत सुनवाएंगे। आइए सुनते हैं इनके स्वरों से सजा गीतों को। पहले सुनते हैं बॉम्बे फिल्म से एक गीत। संगीत है AR रहमान का, बोल लिखे हैं महबूब में तथा सुरों से सजाया है चित्रा ने।

अगला गीत सुनते हैं मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म से चित्रा की आवाज़ों में। बोल लिखे हैं देव कोहली ने तथा संगीत है अन्नू मलिक का।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: Still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। चलिए सुनते हैं तुम बिन फिल्म का एक गीत। आवाजें हैं चित्रा की, बोल अनवर का तथा धुन बनाई है निखिल विनय ने।

श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं सूर्यवंशम फिल्म से। इसके बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत अनु मलिक का है तथा इसे गाया है चित्रा ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं फिलहाल फिल्म से। इसे गाया है चित्रा ने, धुन तैयार की है अन्नू मलिक ने तथा बोल गुलजार के हैं।

0: श्रोताओं, फिलहाल फिल्म के इस गीत के साथ ही एक ही कलाकार कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज के इस अंक में आपने सुप्रसिद्ध गायिका KS चित्रा के गाए गीत सुने। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुर केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय घड़ी में 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आपने सुना मलयालम कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों को बधाई दी। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
2: मैं कुछ दिनों से मान्य सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूँ, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ऐसे मान्य सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा। भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कहा है कि परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल

रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदेह जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 638 अंक बढ़कर 76,698 जबकि निफ्टी 185 अंकों की बढ़त के साथ 23,952 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 1:13 हुए हैं। अब प्रस्तुत है समूहगान शिक्षा कार्यक्रम। आज के इस अंक में सुनिए मलयालम भाषा में प्रस्तुत समूहगान।

उस सुर पर हम अभी गा रहे हैं, लेकिन जब आप ही अभ्यास करते हैं जो सुर पर आप आसानी से एक गाना गा सकते हैं, उस सुर आप आधा सज्जम रख लीजिएगा। ये गाना चतुस्र जाति ताल में चलती है।

अच्छा, इस आकार जो अभी मैंने सिखाया उसको स्वर भी लिख लीजिएगा ना। गारिसा पादमा पानीरी गारिसा, अभी सुर में गाइए। गारिसा पादमा पानीरी गारिसा, और एक दफा।

Akartok? अपना अस्थाई खत्म हो जाती है, काल के साथ अभी ये सीखेंगे। अपना दीदी भी मेरे साथ गा के आएंगे।

0: अच्छा दूसरा, अंतरा या चरणम को अभी ले लेंगे। आसान है, क्यों तो पहला चरण का धुन जो था उसी धुन पर आधारक है इस अंतरा भी। अभी ताल के साथ दूसरा अंतरा या चरणम को अभी गाएंगे।
1: गाएंगे।

0: अच्छा बच्चों, इस गाना आप सीखने के लिए हमें सहायत करने का यहाँ मालती दीदी हाजिर है। उनका नमस्कार भी अभी तक नहीं बोले।
1: नमस्ते दीदी। नमस्ते।
0: अच्छा, उनके साथ अभी आप ये पूरा गाना शुरू से आखिरी तक गाना चाहिए गाएंगे।
1: गाएंगे मालती दीदी।

बहुत अच्छी तरह ये खाना पूरा आप पीट लिए खाना अभी इसको अच्छी तरह अपना दोस्तों मित्रों मित्रों को दोस्तों को सबको मित्रों को उनको भी सिखा के सब मिलकर आपका स्कूल में सब बच्चे मिलकर इस गाने को गाना गाएंगे। अच्छा नमस्ते।

श्रोताओं, अभी आप मलयालम में समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय घड़ी में 1:45 हुए हैं और आप समय हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का, जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतज़ार। व्हाट्सएप फरमाइश गीत, आपकी फरमाइश और आपकी पसंदीदा के गीत लेकर हम हाजिर हैं। आइए संगीत के इस रंगीन कारवां का आगाज़ करते हैं और सुनते हैं आज का पहला फरमाइशी गीत। ये है नौशाद कॉलोनी अटलांटा पॉइंट श्री विजयपुरम से अंडमान निशा फर्ज फिल्म का एक गीत की फरमाइश इन्होंने की है। ये गीत वह अपने प्रिय भाई नौशाद को भेंट करना चाहती है। तो चलिए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ जी।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमें आई है छत्तीसगढ़ से रागिनी के द्वारा। ये सुनना चाहते हैं कटी पतंग फिल्म का एक खूबसूरत गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। ये अपने प्रियजनों के नाम साथ अपना गीत सुनना चाहती है, जिनके नाम है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। चलिए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, ये फरमाइश हमें आई है दत्तरिंगी भाटापरा छत्तीसगढ़ से। ये हैं हीरामणि वर्मा, पारस्परी मणि वर्मा, भूपेंद्र मणि वर्मा, निखेलाल वर्मा। ये मेरे गांव मेरा देश फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं, तो चलिए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमें आई है जायसवाल परिवार से। ये हैं शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद, अर्णव जायसवाल, राखी जायसवाल व संपूर्ण जायसवाल परिवार की ओर से। ये सुनना चाहते हैं त्रिशूल फिल्म का एक गीत। ये हैं जिला नागेंद्र ऐताल महाराष्ट्र से। तो चलिए सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, अगली गीत सौदागर फिल्म से हमें फरमाइश आई है। ये है पद्मा कॉटेज नेपानगर मध्य प्रदेश से। ये सौदागर फिल्म का एक गीत सुनना चाहते हैं। इनके नाम हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुभद्रा और अश्विनी शाह, मंगला बेन और राजेंद्र जी शाह। तो चलिए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, इसी के गीत के साथ ही हमारा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं संपन्न होता है।

0: SSF World Cup, Manu Bhakar settles for bronze. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
2: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
1: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
4: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्तु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
4: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
1: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति CP राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना

0: सूचना की है।
1: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
2: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों, प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
0: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
3: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, ये तो अभी का होगा, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716, जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
4: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगतसिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण

0: अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
1: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का अनूठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
3: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
0: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा

0: में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का मौसम कुछ इस प्रकार रहेगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा अथवा गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं के साथ गरज और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्र तट में ना जाए। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:32 हुए हैं। अब हमारी प्राइमरी चैनल पर पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम शिवजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर।
1: विविध भारती एफएम शिवजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

नमस्कार। दोपहर की इस खुशनुमा बेला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं हेलो डियर फ्रेंड। इस कार्यक्रम में हम देश के अलग अलग कोनों में रहने वाले अपने श्रोताओं को सीधे फ़ोन पर जुड़ते हैं, उनसे बातें करते हैं, दिलचस्प बातें सुनते हैं, उनके अनुभव और उनकी आवाज़ पहुँचाते हैं आप सभी तक। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफ़र एक नई बातचीत के साथ। हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अपना नाम और पता बता दीजिए। जी आप कैसे हैं? हेलो हेलो, हमारी आवाज़ आ रही है आप तक? हेलो हेलो, श्रोताओं लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट चुका है, तो चलिए फिर सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डियर फ्रेंड।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार नमस्कार, आपको भी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी आप बताइए कैसे हैं आप।
1: जी हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है, और 3 दिन से बारिश अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत
0: जी
1: गर्मी चल रहा है।
0: जी पूरे देश में सावन का मौसम तो अभी भी आने ही वाला है। जी बारिश की
1: जी,
0: शुरुआत हुई है अभी।
1: बारिश कई कई जगह में हो रहा है, कई कई जगह में तो बाढ़ की भी सृष्टि हो रहा है,
0: जी
1: और हमारे यहाँ पे बाढ़ होने का ज़्यादा चांस नहीं है, थोड़ा
0: जी जी
1: ऊंचा जगह है इसलिए बाढ़ नहीं होता है।
0: जी आप बताइए हमारे श्रोताओं को आप कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: मैं रंगापाड़ा सोनितपुर आसाम से बात कर रहा हूँ।
0: जी आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं बताइए।
1: आज मैं तलाश मूवी का ये जिंदगी का जंग ये गाना को सुनना था,
0: जी हम सुनवाएंगे।
1: और
0: आप
1: मैं किसी दोस्तों को भी याद करना चाहता हूँ।
0: जी अपने दोस्तों के नाम लीजिए।
1: सबसे पहले भाई कौन मुंडा है, बिमल
0: जी
1: बसुमतारी, रमेश पात्रो, रोनू पात्रो, लाकी और लवण्य पात्रो, दीपंकर पात्रो, और हमारे कंचन हाजोंग
0: जी
1: और शिवा लोहार है, राकेश और पूरन वर्मा, भगवान सिंह।

0: परमार और रमेश प्रजापति दिल्ली से है, धर्मवीर
1: जी
0: और तानुश्री है महाराष्ट्र से, और पुरुषोत्तम कुमार है, अनुप कुमार पत्ताचार्य जी, और ये प्रेमजीत चक्रवर्ती है, और त्रिपुरा से है अविनाश तेली और आशुतोष देवनाथ, संगीता देवनाथ। इन सभी दोस्तों के साथ मैं इस गाना को सुनना चाहता हूँ, और आपको भी और श्री विजयपुराम के सभी आर्जिशों के लिए भी ये गाना डेडिकेट रहेगा मैम।
1: जी धन्यवाद, हम आपके साथ ये गाने का आनंद लेंगे। अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
0: हम तो खेत से जुड़ता हूँ, और हमारा इसी घर पे धान का खेत लगाया जाता है, और चाय का बगान है हमारा
1: जी।
0: अभी पाट तोड़ रहे
1: हैं। खूबसूरत
0: जी
1: जी, आसाम तो चाय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: आप
0: है
1: अपने जगह में, और आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है आसाम की?
0: असम से तो वो चाय बागान की अच्छा है, और हमारे यहाँ पर लेशू का खेती किया जाता है। तेजपुर में लेशू का खेती बहुत फेमस होता है
1: जी।
0: और तो हमारे इसे थोड़ा बाहरी इलाका में रहता हूँ।
1: क्या करना पसंद करते हैं अमल जी, बताइए?
0: खाली समय में हम ऐसे फ्री में रहता है तो ऐसे बांसुरी बनाता है कुछ, और दोस्तों को बेच देता हूँ, और हाथ वाला पंखा बनाते हो, और
1: ऐसी कला
0: जैसे
1: तो
0: फ्री में रहे तो बांसुरी
1: देखने को नहीं
0: बजाते
1: मिलती
0: हैं।
1: है। बहुत
0: जी
1: अच्छी कला है आपके पास बांसुरी बनाने की।
0: जी
1: जी तो अमल जी, फिर चलिए फिर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी आपको भी धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड।
1: नमस्ते मैडम, दिल्ली कुरासिया चांदनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहे हैं।
0: जी इंद्रभान सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, गीत लेते हूँ आपका कलेक्शन लाइट में जुड़ा हूँ और जल्दी अपने पसंद के गीत बताता हूँ।
0: जी
1: तो नाम है मंदिर, अमिताभ बच्चन जी का अपने से गाना है, गायक किशोर कुमार
0: जी।
1: और गीत के बोलिए तुम हो मेरी दिल की धड़कन
0: जी।
1: ऐसा क्या पहले गीत आपके होते हैं निर्देशक को पूरे भाग श्रोता को आकाशवाणी विजयपुरों में पूरे सदस्यों को उनके परिवारजन को रिश्तेदारों को अपनी सहेलियों को विजयपुर में जुड़े सभी घोषित भाई बहनों को स्टाफ कर्मचारियों को हेलो एक्टा रेडियो गीत से जुड़े श्रोताओं को पूरे भारत भारत राज्य श्रोता को जुड़े कर देता हूँ। हम जल्दी से अपने पसंद के गीत सुने के सुना दीजिए जल्दी से मैंने। धन्यवाद
0: जी। तो इंद्रबान जी, हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाएंगे। हेलो
1: जी मैडम।
0: जी, आप अपने बारे में बताइए, आपको क्या करना सबसे अच्छा लगता है खाली समय में?
1: खाने के समय में मेरा मिलकर रोटी चाय बहुत अच्छा लगता है।
0: रोटी चाय जी, बहुत बढ़िया। हाँ, आप अपने छत्तीसगढ़ के बारे में बताइए, वहाँ के जंगल और प्रकृति की सुंदरता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: मैडम यहाँ तो छत्तीसगढ़ में जंगल तो सुंदरता से भरा हुआ है
0: जी।
1: और उधर उधर पेड़ पौधे काफी विस्तृत रूप में विस्तृत रूप में फैले किए हैं, हर जगह जंगल है, हर जगह पेड़ पौधे हैं और हर जगह मतलब पहाड़ देखे, नदी के पास आस पास लेकर सब जगह चारों तरफ जंगले जंगल है और पेड़ पौधे।
0: आप घूमने के लिए जाते हैं जी?
1: जी मैडम जाता हूँ, उस समय मिलता है तो जाता हूँ, नहीं मिल पाता हूँ लेकिन जाता हूँ।
0: इस समय आप हमसे कहाँ से संपर्क कर रहे हैं, घर से या फिर काम से?
1: मैं ड्यूटी से कर रहा हूँ,
0: ड्यूटी से। क्या करते हैं इंद्रबान सिंह जी आप?
1: मैं SCCL में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न काउंसिल में सर्विस करता हूँ और ड्यूटी पीरियड में कई केंद्र में लाइव में भी सब सुनता हूँ
0: जी
1: और बातचीत होता बहुत अच्छा लगता है
0: जी। तो चलिए फिर सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत
1: जी। मैडम खुश
0: जी।

0: Hello, dear friend. Hello, dear friend. Hello, dear friend.
1: हेलो नमस्कार
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में.
1: जी।
0: जी, हमारे श्रोताओं को बता दीजिए, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: जी विश्वजीत पाल, अपने बारे में जी बताइए.
1: मैं ब्लाइंड हूँ तो मेरा खेती बाड़ी का थोड़ा सा काम है, तो इसके लिए घर का लोग के साथ जाता हूँ तो उसको खेती बाड़ी का काम करता हूँ।
0: जी, आप अपने खेतों में कौन कौन से फसल उगाते हैं बताइए.
1: खेती बाड़ी में तो हमारे इधर थोड़ा सा फसल धाने ज़्यादा से ज़्यादा होता है जो
0: जी
1: चावल उत्पादन आती है। तो इसके बाद थोड़ा सा जो लता जातीय फसल होती है ना तो उसको लगाते हैं हम लोग।
0: जी वहाँ के मौसम के बारे में बताइए विश्वजीत जी.
1: मौसम तो बहुत ही सुनसान है, अभी तो बारिश रुक गया, एक सप्ताह में बारिश हो रही है तो बारिश रुक गया, बहुत अच्छा लग रही है।
0: जी बारिश हो गई है और आपके फसलों को पानी भी मिल गया होगा.
1: हाँ पानी तो थोड़ा सा ज्यादा था, बारिश नहीं हुआ है तो इसलिए तो खेती के बोने का टाइम आ गया ना, तो इसलिए तो ज्यादा बारिश हुआ तो खेती के दिक्कत हो जाएगा।
0: जी, आप अपने खेतों में सिंचाई कैसे करते हैं विश्वजीत जी, बताइए हमारे श्रोताओं को, जब
1: थोड़ा
0: गर्मी
1: सा
0: होती है तब.
1: हाँ गर्मी तो थोड़ा सा ज्यादा पानी पीने के बाद वो खेती के थोड़ा सा काम करता हूँ, तो मेरे मामी है पापा है तो उसको साथ जाता हूँ तो उसको थोड़ा सा देखभाल करता हूँ, तो इसीलिए इसके साथ थोड़ा सा काम करता हूँ।
0: जी, आप अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं और वे आपके सभी कार्यों में आपके साथ देते हैं, तो उनके लिए आप क्या हमारे रेडियो के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे सभी सुनने वालों को अपने माता पिता के बारे में?
1: मैं एक बात कहना चाहता हूँ, माता पिता तो सभी होती है तो सबके लिए यही रहेगा, माने माता पिता श्रद्धा करना, बहुत ही प्रणाम से बात करना है तो इसलिए बहुत ही रहेगा बात।
0: जी, माता पिता को बहुत देखभाल से रखना है हमें सभी श्रोताओं को, और उनकी सेवा करनी है.
1: हाँ,
0: जी
1: तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, तो हमारा इधर त्रिपुरा से थोड़ा सा हमारा जो लैंग्वेज है तो बहुत ही परिवर्तन है, तो इसीलिए हमको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है बोलने के लिए
0: हाँ,
1: मेरा तो।
0: नहीं, आप बहुत अच्छी से तरह से हमसे बात कर पा रहे हैं, हम आपकी बातों को समझ पा रहे हैं और हमारे श्रोता भी आपसे जुड़ पा रहे हैं और आपके अनुभव सुनते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा.
1: हाँ तो मेरे को आज एक गाना सुना दीजिए,
0: जी
1: बॉर्डर फिल्म का।
0: जी हम आपको बॉर्डर फिल्म का गीत सुनाएंगे. आप हमारे देश के जितने भी सैनिक हैं, जवान हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने गीत बहुत खूबसूरत चुना है.
1: जी, तो मैं जवानों को ये बात करना चाहता हूँ, मेरा जो स्वास्थ्य से देखभाल करना, तो इसको देश को रक्षा करना, ये
0: जी
1: बात बोलना चाहता हूँ। तो हमारा शरीर स्वास्थ्य जब भी सुस्त रहेगा तो हमारा देश सुस्त रहेगा, तो शरीर स्वास्थ्य पहले सुस्त है उनको देखना बहुत ही जरूरी है।

0: जी, खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं विश्वजीत जी, बताइए हम हमारे श्रोताओं को।
1: मैं खाली समय में ज्यादा से ज्यादा रेडियो का गाना का पसंद करता हूँ,
0: जी
1: और थोड़ा सा नींद, माने शरीर का नींद को आना बहुत ही जरूरी है, तो
0: जी
1: इसलिए
0: थकान
1: थोड़ा
0: हो
1: सा
0: जाती है
1: नींद।
0: खेतों में, आप बहुत ही संघर्ष भरा काम करते हैं। हमारे देश के सभी किसान बहुत मेहनत से हमारे लिए अनाज अपने खेतों में उगाते हैं, उसी से ही हम
1: जी,
0: पूरे देश में।
1: हाँ,
0: जी
1: तो मैं गान सभी को डेडिकेट करना चाहता हूँ, मेरा भाई अविनाश जी
0: जी
1: और राकेश जी, आशुतोष जी और जितना भी अभी श्रोता सुन रहे, सबके लिए डेडिकेट रहेगा एवं आप ये सुनिएगा।
0: जी तो विश्वजीत जी, चलिए फिर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी, तो आपके बातचीत बहुत अच्छा लगता हूँ
0: जी
1: मैं बात
0: धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: हाँ जी नमस्कार।
0: जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: हाँ जी,
0: जी, हमारे श्रोताओं को बताइए आप कहाँ से और कौन बात कर रहे हैं।
1: मैं अजीत शर्मा, ग्राम नगला काचियान, पोस्ट औरंगाबाद, कासगंज, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: जी अजीत जी, बताइए अपने बारे में, कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: बस हम तो बढ़िया हैं, और पुराने गाने सुन रहे हैं, चल रही है।
0: जी, रेडियो सुनना पसंद करते हैं आप।
1: हाँ जी, शायद रिपेयरिंग का काम है, साथ साथ काम भी कर रहे हैं।
0: जी, हेलो डियर फ्रेंड कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है? आप कॉल की में बात करते हैं इससे पहले भी?
1: हाँ, इससे पहली बात कॉल आई है, बात करते हैं, अब बढ़िया लगता है।
0: जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज हमारे कार्यक्रम में आप?
1: फिल्म का नाम रहेगा बगावत, गाने के बोले नांगन सारू बसेरा मैं बन के प्रेम से तेरा।
0: जी, किन के साथ सुनना चाहते हैं गीत? अपने प्रिय मित्रों के नाम लीजिए।
1: हाँ, हमारे दोस्त हैं रोशन लाल साहब के हैं, रूप सिंह साहब के हैं, वेदराम मुखिया हैं।
0: जी,
1: हाँ जी,
0: आप इस वक्त हमें कहाँ से बात कर रहे हैं बताइए।
1: ग्राम नगला काशियान, पोस्ट औरंगाबाद, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: जी, आप पेशे से क्या करते हैं अजीत जी, बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं।
0: जी, रिपेयरिंग का काम करते हैं। आज आप काम पर नहीं गए?
1: नहीं, काम पर ही है, दुकान पर ही है, और गाने भी चल रहा है, डीटीएच सेट लगा हुआ है दुकान पर।
0: जी, काम भी हो रहा है और हम फिर

0: गीतों का आनंद भी ले रहे हैं।
1: हाँ जी,
0: जी, आप हमारे रेडियो के कौन कौन से कार्यक्रम सुनना पसंद करते हैं?
1: मुझे ज़्यादातर तो यही हेलो फरमाइश ज़्यादा पसंद है।
0: जी, हेलो फरमाइश ज़्यादा पसंद है। आप अपने बारे में ऐसी कौन सी प्रेरणादायक बात जो है आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी के बारे में जो आप शेयर करना चाहते हैं तो बताइए।
1: और हम कुछ नहीं बताना चाहते हैं, सर कुछ नहीं।
0: जी, तो फिर चलिए फिर सुनवाते हैं आपका ये गीत।
1: ठीक है।

0: जोर समझ रहा है नाता, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

0: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड
1: जय माता जी।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और
0: जी।
1: मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान

0: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड
1: जय माता जी।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं हमारे श्रोताओं को बताइए
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और
0: जी।
1: मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमेल बुगला।
0: जी, आज आप इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी मैडम, फिल्म का नाम रहेगा ये मोहब्बत है और उसमें गाने के बोल है बरसों के बाद ये गाना।
0: जी, हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाएंगे। आप किन के साथ ये गीत सुनना चाहते हैं, उनके नाम लीजिए।
1: जी मैडम, आप वहाँ का मौसम कैसा हो रहा है पहले ये बताइए आप।
0: यहाँ का मौसम बहुत सुहाना है, धीमी धीमी से वर्षा हो रही है। आप वहाँ के मौसम के बारे में बताइए।
1: मैडम यहाँ भी कम से कम 20 दिन हो गया मैडम बारिश का इंतजार है और आज तो काफी धूप है मैडम।
0: जी, अभी बारिश होना शुरू ही हुई है पूरे जगह पर, सभी जगह पर।
1: जी, यहाँ थोड़ी कम है, बहुत कम है मैडम राजस्थान में यहाँ बारिश।
0: जी, सावन का महीना आ गया है, अब तो बारिश होगी सभी जगहों पर।
1: जी
0: आप क्या करते हैं बताइए जी।
1: जी मैडम, मैं तो घर पे रहता हूँ, दिव्यांग आंखों से तो आपका कार्यक्रम सुनता रहता हूँ और थोड़ी खेती है तो मम्मी पापा है वो खेती संभालते हैं, तभी इस टाइम हमारे बाजरा लगा हुआ खेती।
0: जी, आपके घर में कौन कौन रहते हैं आपके साथ में।
1: अभी तो हमारे यहाँ जैसे मेरे तो घर परिवार में तो जैसे मम्मी है, पापा है और मैं हूँ, और इस टाइम तो हम तीन लोग हैं। ऐसे मेरे तीन सिस्टर है और एक भाई भैया है,
0: जी
1: भाभी है और एक भतीजी है और एक भतीजा है।
0: जी रेडियो से ऐसे कुछ अनुभव जुड़े हैं आपके पास, तो हमारे श्रोताओं को आप साझा करिए।
1: बस मैडम, रेडियो से यही है कि रेडियो ऐसा है कि हमारे लिए एकता बनाए रखता है और एक दूसरे को जान पहचान कराता है और एक दूसरे को साथ में चलने का है, या फिर ऐसी कोई भी वो नहीं करता, अच्छे अच्छाई देता है रेडियो सुन
0: जी,
1: के।
0: हम किसी को भी भेदभाव नहीं करते हैं और इस कार्यक्रम से हम पूरे देश के लोगों को एकजुट करते हैं, सभी से बातें करते हैं और सभी की बातें सुनते भी हैं।
1: हाँ, सभी की बातें भी सुनते हैं और क्योंकि रेडियो ऐसा है कि हमको दूर दूर से दोस्त मिल जाते हैं, हम उनको जानते नहीं पर रेडियो के माध्यम से, कभी उन्होंने ऐसे देखा नहीं पर रेडियो के माध्यम से हमारी जान पहचान हुई है, तो हमें उनसे बातें भी करते रहते हैं मैडम एक
0: जी,
1: दूसरे।
0: बहुत अच्छी बात है, हमारे रेडियो ने आप लोगों को बहुत अच्छे खूबसूरत रिश्ते दिए हैं। आप
1: जी
0: किस तरह के गीत सुनना पसंद करते हैं।
1: मैडम, गीत मेरे को सभी पसंद है, ऐसा कोई नहीं है कि मेरे को ये पसंद है, जो जो भी गीत अगर मेरे को पसंद आता है तो चाहे नए हो चाहे पुराने हो चाहे चाहे अभी के नए बने हो, सब अच्छे लगते हैं मैडम।
0: जी, और आप अपने राज्य के बारे में बताइए, राजस्थान। आप हमारे श्रोताओं को बताइए वहाँ की खासियत, वहाँ की खूबसूरती के बारे में।
1: मैडम ये है कि खूबसूरती यही है कि हमारे यहाँ राजस्थान में काफी दूर दूर से घूमने भी आते हैं और अभी जैसे अभी सावन का महीना लगेगा यहाँ तो तीज तीज आती है, यहाँ हमारे को मानते हैं तो यहाँ तीज माता की सवारी भी निकली जाती है और तीज माता के हम झूला झूलते हैं और हमारे यहाँ खास कर घेवर बनता है तो सभी जगह यहाँ तीज के दिन घेवर भोग
0: जी,
1: लगा के फिर घेवर खाते हैं, हम एक दूसरे को बांटते हैं।
0: वहाँ पर पानी की दिक्कत होती है।
1: हाँ मैडम, पानी की यहाँ थोड़ी समस्या ज्यादा ही है, यहाँ बहुत कम जैसे बोर में होता है तो अभी काफी ओंडा पानी है और पानी यहाँ घर में दूर दूर से कहीं लाना लाया जाता है, मेरा
0: जी,
1: टंकी जो है हमारे यहाँ।
0: आप हमारे श्रोताओं को पानी के संरक्षण के लिए क्या आप कहना चाहेंगे।
1: मैडम पानी के लिए यही कहना कि जिसको पानी की अगर कम मिला है तो उनको तो सब पता है कि पानी कैसे अनमोल है, पानी की कैसे कदर रखते हैं,
0: जी
1: पता नहीं है तो वो तो ऐसे ही वो पानी को उजाड़ता है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पानी की कदर करें और जिस आपके पास अगर ज़्यादा है तो कोई किसी के पास कम है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कदर पानी की करें तो ताकि आपको ज़्यादा मिल रहा है तो जिसको नहीं मिल रहा है तो उनके पास भी पहुँच सके।
0: जी सभी लोगों को पानी की बचत करनी चाहिए।
1: जी,
0: जी, राजस्थान का कौन सा ऐसा त्यौहार है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, उसके बारे में बताइए।
1: मैडम राजस्थान में तो ऐसे तो सभी त्यौहार पसंद है पर ये ज्यादा करिए तीज आती है ना तो इसमें सावन में तो यहाँ झूला खाया जाता था, पहले तो काफी होता था मैडम पर अब तो बहुत कम चलन हो गया, फिर भी एक दूसरे को

0: तो मैडम कोई भी हो सभी अच्छे लगते हैं। ये ऐसा कोई भी त्योहार नहीं है कि पूरा भारत देखने की ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं, सभी अच्छे हैं।
1: जी, आप घूमने के शौकीन हैं?
0: जी मैडम घूमने के शौकीन है, कहीं कोई के साथ जाना होता है तो वहाँ जाते भी हैं।
1: जी, अरे राजस्थान में ऊँट है, तो क्या आपने कभी ऊँट की सवारी की है? अनुभव कैसा है?
0: हाँ जी मैडम ऊँट की सवारी तो नहीं की कभी। हाँ यह है कि जो पहले वो जो बैलगाड़ी आती थी ना ऊँट के बना के, वो उसमें ऊँट के ऊपर तो नहीं बैठा, पर हमने जो बैलगाड़ी है उसके ऊपर तो हमने बैठी है मैडम। जो ईंट भट्टे होते थे ना,
1: जी,
0: तो वहाँ ईंट भट्टों पर ईटा लगा लकड़ाते थे ना, तो उसमें बैठते थे हम।
1: चलिए फिर सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत सभी श्रोताओं के साथ।
0: मैडम मित्रों को साथ में होते, मित्रों को
1: जी
0: याद
1: जी
0: कर।
1: जी जरूर
0: जी सबसे पहले तो आप है
1: जी, धन्यवाद
0: और पूर्णिमा मैडम जो बीजीपुरम से है, और
1: जी।
0: कॉलर लाइफ नंबर राकेश है, भगवान सिंह जी है, रमेश पात्र है, अमल बिमल और जितने भी कॉलर तमाम सुनने वालों के साथ सुनना चाहता हूँ मैडम ये गाना।
1: जी, तो चलिए फिर सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: थैंक यू मैडम।

0: साल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस

0: योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, हेलो डियर फ्रेंड कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। चलिए कॉल लगाते हैं हमारे दूसरे श्रोताओं को। हेलो डियर फ्रेंड।
2: हेलो हेलो, नमस्ते मैम, नीतू बोल रही हूँ।
1: जी नमस्ते, आप कहाँ से बात कर रही हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: मैं पात्रापुर से बोल रही हूँ।
1: जी पात्रापुर से बात कर रही हैं आप। आज आप हमारे कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहती हैं, बता दीजिए। जी हम आपको अग्नि साक्षी फिल्म का गीत सुनाएंगे। आप अंडमान के मौसम के बारे में बताइए हमारे पूरे देश के श्रोताओं को।
2: बारिश भी है यहाँ पे, धूप भी है, सबसे अच्छा तो मुझे बारिश वाला मौसम बहुत पसंद है।
1: जी बारिश के मौसम में आप कौन कौन से पकवान बनाती है अपने घर में, बताइए।
2: सारी तरह पकवान बनाती
1: हूँ। जी आप अंडमान में कौन कौन सी जगह घूमना आपको पसंद है?
2: मुझे ना मंडूर वगैरह घूमना पसंद है।
1: जी मतलब आप समुद्र तट किनारे आपको घूमना सबसे ज़्यादा पसंद है, हरियाली के बीच। जी तो समय की तंगी है, तो चलिए हम फिर सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: थैंक यू मैम।
1: जी

श्रोताओं, इसी के साथ ही आज का हमारा हेलो डियर फ्रेंड कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहे। जिन श्रोताओं से आज बात नहीं हो पाई, निराश मत होइए, हो सकता है अगली घंटी आपके ही फ़ोन पर बजे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय घड़ी में 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष फिल्मी संगीत कार्यक्रम यूं ही गाते रहो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का ये अंक समर्पित है भारतीय सिनेमा की मधुर आवाज़ को, जिनकी गायिका ने भाषाओं की सीमा को पार कर करोड़ों दिल में अपनी अलग पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध गायिका KS चित्रा जी की, जिनका जन्म 27 जुलाई 1963 में हुआ था। चित्रा जी ने हिंदी, मलयालम, तमिल, कन्नड़, बांग्ला, उड़िया और कई अन्य भारतीय भाषाओं में हजारों गीत गाए हैं। उनकी मधुर भावपूर्ण और सुमधुर आवाज़ ने उन्हें भारत की बुलबुल के रूप में विशेष पहचान दिलाई है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर आइए सुनते हैं कुछ सदाबहार गीत चित्रा जी के स्वरों में।
1: चुनमुन चुनमुन

श्रोताओं कि इस चित्रा जी ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माँ से प्राप्त की थी, जो स्वयं एक गायिका थी। बाद में उन्होंने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का गंभीर अध्ययन किया। यही मजबूत शास्त्रीय आधार उनके फिल्मी गीतों में भी साफ झलकता है।

श्रोताओं, अपनी सुरमई आवाज से करोड़ों का दिल पर राज करने वाली के एस चित्रा को उनके शानदार संगीत सफर के लिए उन्हें प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है करोड़ों श्रोताओं का वह स्नेह, जो आज भी उनके हर गीत को उतने ही प्रेम से सुनना चाहते हैं।

श्रोताओं, संगीत केवल सुरों का मेल नहीं बल्कि भावनाओं की भाषा भी है। के एस चित्रा की आवाज़ में एक ऐसी आत्मीयता है जो हर पीढ़ी को अपनी ओर खींच लेती है। शायद यही वजह है कि आज भी उनके गीत रेडियो, मंच और संगीत प्रेमियों के प्लेलिस्ट का अहम हिस्सा बना हुआ है।

श्रोताओं, के एस चित्रा जी का संगीत हमें यह सिखाती है कि मधुरता, समर्पण और विनम्रता जब एक साथ मिलते हैं तो वे समय की सीमाओं को पार कर जाते हैं। यही कारण है कि उनकी आवाज़ आज भी उतनी ही ताज़ा और प्रिय लगती है जितने वर्षों पहले लगती थी। उनकी जन्मदिवस पर हम उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं कि वे स्वस्थ, प्रसन्न रहे तथा अपनी संगीत से हमें आनंदित करती रहे।

श्रोताओं, इसी मधुर गीत के साथ आज का यूं ही गाते रहो यहीं संपन्न होता है। आशा है कि एस चित्रा के सदाबहार गीतों का यह विशेष अंक आपको पसंद आया होगा।

0: 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार। अब लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है AISSMS पुणे।
1: आप सुन रही हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे।

0: सेहतनामा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष को और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष का।
2: नमस्कार।
1: नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह।
2: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था
1: जी।
2: काफी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी, लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें यहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं, जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है
1: जी।
2: तो अगर

0: ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और
1: जी
0: देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
1: क्या
0: तो
1: बात है
0: शुक्रिया एक बार
1: जी
0: और।
1: डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टरी का सफर है ये किस तरह शुरू हुआ था? बचपन से ही आपको दिलचस्पी थी? परिवार में डॉक्टर थे?
0: नहीं, हमारे परिवार में मेरे पिताजी माताजी दोनों पीएचडी थे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं था। मेरे पिताजी को एक जुनून था मुझे डॉक्टर बनाने के लिए। मुझे एक्चुअली डॉक्टरी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था,
1: ओके
0: मुझे फोटोग्राफी करनी थी एक्चुअली।
1: हाँ
0: और मैंने बीएससी भी लिया था, और 2 साल बीएससी के बाद एक दिन पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरी एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा दी।
1: ओके
0: अच्छा, उस जमाने में ऐसी बात थी कि ऐसे आजकल के जैसे नहीं है कि माता पिता को हम ना बोल सकते थे। दूसरी बात थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मेडिसिन में एडमिशन हो गई मेरी। लेकिन पहले तो जब मेडिसिन में गया तो यही था कि चलो एक कोर्स है, हमको इसको खत्म करना है, वरना ना करे तो 12th स्टैंडर्ड पास हो, आगे आपको नौकरी क्या मिलेगी।
1: बिल्कुल
0: तो यही था कि जब से मेडिसिन में गया, और मैं ऑनेस्टली कहता हूँ पहले साल तो काफी मुश्किल होते हैं सभी डॉक्टर्स के लिए,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: एनवायरनमेंट बहुत अलग रहता है, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता।
1: जी
0: पहले
1: जी
0: साल में जब आप एनाटॉमी में जाते हो और आपको 1 साल लिटरली कैडेवर या डेड बॉडी के साथ आपको डिसेक्शन करनी होती है, वो आपको बहुत ही, इट्स अ डिफरेंट ट्रेनिंग, और आपको वो अलग तरह के इंसान बना देता है, क्योंकि आप इंसानों के साथ बाद में, आप उनकी जिंदगी के साथ या किसी भी चीज, उनकी बीमारियों के साथ आप काम करते हैं। एक टाइम अंदर उसके पेशे में गया तो बहुत पसंद आया, और अभी तो क्या कहते हैं, अभी 40 साल के ऊपर हो गए, और आंख का डॉक्टर बनने के बाद तो 35 साल हो गए हैं, खुद की
1: जी
0: प्रैक्टिस 30 साल हो गए, तो ऑब्वियसली बेहद पसंद है, इसीलिए हूं अभी तक इसके अंदर।
1: जी ये जो आंखों के डॉक्टर होते हैं क्या बोलते हैं उनको? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट।
0: जो टिपिकल टर्म है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है,
1: जी
0: ऑफ्थेल यानी आई, तो आई सर्जन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एक ही चीज है।
1: जी इस समय में सबसे बड़ी आंख की समस्या क्या चल रही है?
0: मेरे हिसाब से सबसे बड़ी आंख की समस्या जो हम आजकल देख रहे हैं, जो पिछले 10 साल में और पिछले 5 7 8 साल कोविड के बाद सबसे ज्यादा हुई है, वो आंख का स्ट्रेन, आई स्ट्रेन जो हम कहते हैं,
1: जी बिल्कुल
0: जिसे इवन पहले कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते थे, लेकिन अभी बच्चों में भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं हम। दूसरी बात है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज हो गए हैं, आप अगर पूछें कि उनको, बच्चों को आजकल बाहर जाके खेलने के लिए ना जगह है ना खेलते हैं, तो उनकी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा है। जब घर आते हैं तो या तो टीवी है या मोबाइल है या पैड है, तो उसके वजह से आंखों की बीमारियां जो है रिलेटेड टू आंख की थकावट या आंख की स्ट्रेन, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी बात है कि हम छोटे बच्चों में आजकल चश्मे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इसी के वजह से। पहले जमाने में जब हम बड़े हो रहे थे तो ज्यादातर बाहर की एक्टिविटी थी, आंख की एक्टिविटी रीडिंग और राइटिंग थी। टेलीविजन तो शायद 70s 80s के बाद ही अपने देश में प्रचलित हुआ, तो इतना ज्यादा आंख का काम नहीं था। प्लस लोग टाइम पे सोते थे, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती थी। आजकल सोते भी कम है, आंख का काम पूरे टाइम कंप्यूटर्स पे रहता है, या जो कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते हैं या आई स्ट्रेन कहते हैं, आंख की थकावट कहते हैं, ये आजकल में सबसे ज्यादा, पहले तो हम लोग कहते थे कि हाँ स्ट्रेन है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं ये एक बीमारी की तरह और एक लिटरली एपिडेमिक की तरह फैल रहा है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो आई स्ट्रेन है इसके भी कई प्रकार होते होंगे। एक जो अमूमन डॉक्टरों के पास जाएं जब चश्मा चेक कराने तो वो कहते हैं आपकी आंखों में ड्राइनेस हो रही है, क्या
0: जी
1: आप कंप्यूटर पर ज्यादा काम करते
0: जी
1: हैं?
0: जी
1: ड्राइनेस भी उसका एक रूप है?
0: ड्राइनेस रूप है, इसका एक बहुत सिंपल कारण है कि जब कभी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या किसी जगह पे हम ज्यादा ध्यान दे के देखते हैं तो हमारा ब्लिंकिंग कम हो जाता है, जो आंख हम बंद खुली करते हैं वो कम हो जाता है। नॉर्मली अपने आंख में आंसू का एक पर्दा है जो अपनी आंख को गीला रखता है, और हर टाइम जब अपनी पलक बंद होके खुलती है तो एक नया पर्दा तैयार हो जाता है जो अपनी आंख को नॉट ओनली प्रोटेक्शन करता है, उसको सुरक्षित रखता है, लेकिन उसको गीला भी रखता है, क्योंकि आंख का गीला रहना बहुत जरूरी है। स्पेशली सामने की कांच जो है, जो कॉर्निया है जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है, जो कीकी है आंख की या खिड़की है, वो उसको गीला रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखें कि अगर आप कंप्यूटर के सामने अगर आप कॉन्स्टेंटली आप बैठें और काम करते रहें तो आपका ब्लिंकिंग कम हो जाता है, जो आंख की पलक खोल बंद होनी है वो कम हो जाती है, और उसके वजह से आपके आंख का पर्दा जो है जल्दी टूटता है, और आंख में ऐसे लगता है कि कुछ गया है, कचरा है, हम आंख रब करते हैं और उसके बाद फिर वो ड्राइनेस हो जाती है।

0: तो अगर आप मुझे पूछे इसका इलाज यही है, सबसे कहता हूँ कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी जगह पे अभी लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स हैं, कि आपको बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। जब
1: जी
0: आप कंप्यूटर पे देखते हैं या लैपटॉप देखते हैं, एटलीस्ट एक 15-20 मिनट के बाद आँख, 1 मिनट के लिए आँख बंद कीजिए,
1: वो कोई
0: कहीं दूर देखिए।
1: फॉर्मूला
0: ट्वेंटी
1: बताया गया ना
0: ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर्मूला है,
1: जी
0: अब कौन फॉलो करता है भगवान जाने, कोई अपना घड़ी देख के तो 20 मिनट के बाद नहीं करेगा, लेकिन
1: जी
0: एक जनरल है कि आप 1 घंटे में एक टाइम तो 1-2 मिनट तो ब्रेक ले सकते हो ना।
1: ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, अगर इच्छा है और अपने प्रति सरोकार है तो ये किया जा सकता
0: और
1: है।
0: दूसरी बात हम देख रहे हैं कि अभी सारे स्क्रीन जो है वो एलईडी है, पहले एलसीडी थे,
1: जी
0: कोई साल पहले ऑलमोस्ट 8-10 साल पहले तक एलसीडी स्क्रीन्स थे, अभी एलईडी स्क्रीन्स आए हैं, और एलईडी स्क्रीन्स जो हैं उनमें हम ज्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम देख रहे हैं,
1: वो
0: जब
1: ज्यादा
0: जब
1: चमकीली होती है
0: ज्यादा चमकीली रहती हैं तो उसका
1: जी
0: जो ब्राइटनेस रहता है तो ग्लेयर जो आता है उसके वजह से तकलीफ ज्यादा होती है।
1: जी

0: nga cintai hang min ta angin tin ga gede nyemol hi aharan hoi yang adel nga hangin ai sinta nga mu hek in hurej hang ro ngi ta ka sa ta ita fen kai no ta laharap nga yen
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:30 हुए हैं। सुगम संगीत आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं घनश्याम वासवानी की आवाज़ में कुछ गीत। पहले सुनते हैं घनश्याम वासवानी का गाया निदा फाजली की रचना।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप घनश्याम वासवानी की आवाज़ में कुछ गीत सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:40 हुए हैं।

लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के इस सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज की सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5 तमिल कार्यक्रम में आप फिल्मी गीत सुनेंगे। बंगला कार्यक्रम में 5:30 पर आप युवाणी कार्यक्रम सुन सकेंगे। संध्या 6 कृषि जगत कार्यक्रम में आप डॉक्टर सुभाष पालवे के साथ की गई बातचीत सुनेंगे, पशुओं में लीवर फलोक विषय पर जानकारी। फिल्मी गीत पॉप मसाला फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं बताया जाएगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया 7:20 पर आप सुनेंगे। 7:30 पर युवाणी में गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आपारण ले पाएंगे 8:15 पर। 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 8 संसद समीक्षा, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर पब्लिक स्पीक तथा रात्रि 10 आप हमारे केंद्र से सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशे आते हैं, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये तो थे, लेकिन रात्रि 10 विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम आप

सुनेंगे छाया गीत। ये तो थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल सुबह 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात प्रभाती वंदना आप सुनेंगे। एग्रोटिस्ट में जानेंगे बछड़ों में अतिसार व बचाव के बारे में 5:55 पर। 6:10 पर जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा बाहर शीर्षक पर 6:15 पर। 6:30 पर रामचरितमानस गान आप सुनेंगे। मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण आप सुनेंगे 6:50 पर। सुबह 7:00 आप सुन पाएंगे जन सूचनाएं। 7:15 पर फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम सुनेंगे देश रागनी। इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान में 7:30 पर खेल जगत कार्यक्रम के तहत आप जॉगिंग कुछ सुझाव विषय पर एमपी शक्तिवेल के साथ ली गई भेंटवार्ता सुनेंगे और कुछ फिल्मी गीत सुनवाया जाएगा। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सलमा आगा और जगजीत सिंह को सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का आप आनंद ले पाएंगे सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप उषा विजय कुमार का कर्नाटक शैली में गोटू वाद्यम सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल का आप आनंद ले सकेंगे सुबह 10:00। दिन के 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत का आप आनंद ले पाएंगे 11:30 पर। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में आप विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस पर वार्ता सुनेंगे। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस पर वार्ता और फिल्मी गीत सुन सकेंगे। दोपहर 1:10 पर आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रद्युम शर्मा और शीलाधर को सुन पाएंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का आप आनंद ले पाएंगे 1:30 पर। दोपहर पर 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा का समापन होगा, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें फिल्म संगीत का कार्यक्रम, नॉन स्टॉप म्यूजिक और फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे यूं ही गाते रहो 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस पर वार्ता और किन्युका गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत सुनेंगे। 4:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में गायक होंगे महेंद्र कपूर। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 4:40 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुनेंगे 4:45 पर। शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा मगलिर उलगम। बंगला कार्यक्रम में 5:30 पर आप लोकगीत सुनेंगे। संध्या 6:00 किसानवाणी कार्यक्रम में नारियल सुपारी व पशुपालन से जुड़े नमूना घर के किसान श्री देवेन के साथ की गई बातचीत सुनवाई जाएगी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम में बाहर का आप आनंद ले पाएंगे 6:30 पर। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम, जन सूचनाएं बताया जाएगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी में देश की शान कार्यक्रम केंद्रित होगा सोनू निगम पर और विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस व विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर चर्चाएं की जाएगी। चित्रपट संगीत 8:15 पर। 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 8:00 संसद समीक्षा, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक, 9:45 पर मंथन तथा रात्रि 10:00 संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे, जिसे आप अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन रात्रि 10:00 विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे छाया गीत। अभी आप हमारे केंद्र से आज के सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

0: जाके।
1: कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म हम तो मोहब्बत करेगा से। कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें हैं।

लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल स्वरों में फिल्म 1 2 का 4 का ये गाना। मजरू के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है AR रहमान ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி நிலையம் வழங்கும் தமிழ் அமுதம். வணக்கம் நேயர்களே.

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान साथियों को जोया की ओर से प्यार भरा नमस्कार। किसान साथियों, जब तक आप स्वयं पर विश्वास रखते हैं, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। सपने देखिए, उन पर विश्वास रखिए और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। सफलता देर से मिल सकती है, लेकिन सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन में मुश्किलें इसलिए नहीं आती कि आपको रोक दे, बल्कि इसलिए आती है कि आपको पहले से अधिक मजबूत बना दे। हर ठोकर आपको कुछ नया सिखाती है और हर संघर्ष आपको उस मंजिल के और करीब ले जाता है जिसके लिए आपने सपने देखे हैं। तो हमेशा मेहनत करते रहिए और आगे बढ़िए, सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। आज के इस विचार को साथ लिए चलिए अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आइए हम आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। साथियों, आज का प्रश्न है, कीटनाशकों के छिड़काव के दौरान हवा की दिशा पर ध्यान देना चाहिए या नहीं? प्रश्न में एक बार फिर दोहरा देती हूँ, कीटनाशकों के छिड़काव के दौरान हवा की दिशा पर ध्यान देना चाहिए या नहीं? आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहिए, कार्यक्रम के दौरान हम इसका उत्तर आपको अवश्य बताएंगे। और अब चलिए साथियों, सबसे पहले हम आपको सुनवा देते हैं आज की बातचीत, जिसका विषय है पशुओं में लीवर फ्लू। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुभाष पालवे जी।
1: किसान भाइयों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे पशुओं में होने वाली एक बीमारी लीवर फ्लू के बारे में। हमारे साथ कार्यक्रम में है पशुपालन विभाग के डॉक्टर सुभाष पालवे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज की हमारे चर्चा का जो विषय है लीवर फ्लू बीमारी
2: जी,
1: तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये बीमारी है क्या, किससे होती है बीमारी?
2: लीवर फ्लू डिजीज़, यानी कि इसको फेशियोलोसिस के नाम से भी जानते हैं,

0: ये एक पैरासिटिक बीमारी है जो कि यहाँ के जोन में एंडेमिक है, और हमारे जानवर जैसे कि कैटल, भैंसी, फिर शिप गोट में पाई जाती है।
1: अच्छा, मतलब गाय, भैंस, बकरी
0: जी
1: सब में
0: जी
1: होती है
0: बकरी
1: तुम्हें?
0: में भी पाई जाती है।
1: अच्छा, और आपने जैसे कहा कि ये परजीवियों से
0: जी
1: होती है,
0: परजीवी से होती।
1: और ये परजीवी हमारे मतलब यहाँ के वातावरण में बहुतायत में पाए
0: जी
1: जाते हैं?
0: प्राय पाए जाते हैं।
1: अच्छी बात है। तो जहाँ तक हमारे द्वीपों का सवाल है, आपने कहा कि ये एंडेमिक है, यानी यहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा
0: जी
1: देखने में आई है,
0: जी
1: तो इसका क्या कारण है?
0: एक्चुअली इस बीमारी के होने के हमारे अंडमान निकोबार में कारण ये है कि पहला कि ये यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट सीज़न नहीं है। हमारे जो पूरे साल हम लोग सीज़न को रफली दो भागों में बांटते हैं, एक तो रेनी सीज़न है और दूसरा ड्राई सीज़न है।
1: अच्छा
0: रेनी सीज़न मई से अक्टूबर तक चलता है और बाकी जो ड्राई सीज़न नवंबर से ऑनवर्ड्स अप
1: अच्छा
0: टू
1: मतलब
0: अप्रैल।
1: सूखा और जो
0: जी
1: बारिश का
0: तो
1: मौसम,
0: इसके
1: दो
0: कारण
1: मौसम
0: क्या
1: में।
0: है,
1: हाँ
0: ये इसका लाइफ साइकिल अनइंटरप्टेड चलता रहता है।
1: अच्छा,
0: और दूसरा चीज़ है कि यहाँ इंटरमीडिएट होस्ट है बीमारी का, जिसको कि घोंगा बोलते हैं हम आम भाषा में, लिमनिया, वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है।
1: अच्छा,
0: प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होने के कारण क्या है कि ये बीमारी कंटिन्यू चलते रहती है।
1: अच्छा, तो इसका जो जो जो आपने कहा फेस्सियोला, जो
0: जी
1: परजीवी है, ये घोंगे में भी चला जाता है,
0: जी
1: तो
0: इसका
1: इसका
0: लाइफ साइकिल
1: क्या,
0: इसी प्रकार
1: अच्छा
0: है।
1: सा जीवन
0: घोंगा
1: चक्र
0: इसका
1: ऐसा चलता है?
0: इंटरमीडिएट होस्ट है। जी
1: कैसे होता है ये, पहले जानवरों से बाहर निकलता है?
0: जी शुरू इसका लाइफ साइकिल ऐसा है कि शुरू में ये जो परजीवी है एक अंडे के रूप में गोबर के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है जानवर
1: यानी
0: के,
1: जो पशु प्रभावित है
0: गाय बैलों के
1: उनके गोबर
0: भैंसियों
1: से बाहर आता
0: बाहर
1: है।
0: रहता है प्रे। उसके बाद ये कुछ इसका स्टेजेस है उसमें डेवलप ट्रांसफॉर्म होता है और ये फिर से घोंगे के अंदर चला जाता है। घोंगे
1: अच्छा,
0: के अंदर इसका कुछ लाइफ साइकिल चलता है, वहाँ से ये फिर एक फ्लूक के रूप में बाहर आता है। वहाँ पे ये पानी, जैसा पानी जमा हुआ है, घास है या तालाब है या पत्तियों में चिपक जाता है आके। जब
1: अच्छा,
0: कोई दूसरा फ्रेश जानवर इसको चारा चरने जाता है, खाना खा लेता है, उसके साथ फिर से ये जानवर में जाके
1: जानवर को
0: ये
1: बीमार कर देता
0: बीमार
1: है।
0: कर देता है। ये अनेकों रूट होते हुए लीवर में जाता है, लीवर में पैरेन्काइमा है, फिर उसका लीवर को डैमेज करते हुए बाइल डक्ट में रहता है ये।
1: अच्छा, मतलब पशुओं में, पशुओं को बीमार कर
0: जी
1: देता
0: बीमार
1: है।
0: करता है।
1: तो डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जैसे बारिश होती है, बारिश का मौसम होता है, तो ये जो छोटे छोटे घोंगे बहुतायत में होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो क्या उस समय बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते
0: ज़्यादा
1: हैं,
0: चांसेस है।
1: जो नई घास को जो
0: जी
1: खाते
0: जी जी
1: हैं?
0: और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन का होना अंडमान
1: अच्छा,
0: निकोबार
1: गर्म
0: में।
1: और आर्द्र जलवायु
0: जी
1: जो
0: जी
1: है,
0: जी
1: चलिए।
0: इसको बढ़ावा देते हैं इस बीमारी को।
1: पशु अगर लीवर फ्लूक से प्रभावित होता है, यानी जो फैसियोला परजीवी है उसके शरीर में प्रवेश करता है और उसे बीमार कर देता है, तो क्या क्या मोटे मोटे लक्षण उभरते हैं?
0: जी इसको मैं देखने को आता है कि जानवर लीवर फ्लूक डिजीज से अफेक्ट होने के बाद कमज़ोर हो जाता है, उसका खाना पीना कम हो जाता है, उसके बाद उसका डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है,
1: अच्छा
0: उसमें डायरिया देखने को मिलता है, स्पेशली
1: अच्छा
0: शूटिंग
1: दस्त
0: डायरिया।
1: दस्त होती है?
0: जी शूटिंग
1: अच्छा,
0: डायरिया देखने को
1: मतलब
0: मिलता
1: पानी
0: है
1: की तरह?
0: क्रोनिक का, जी पानी के तरह एकदम शूटिंग के जैसा होता है।
1: अच्छा,
0: उसके बाद कुछ जानवरों में सब मैंडिबुलर एडिमा भी देखने को मिलता है, पानी जैसा गले में भर जाता है, और बॉटल जाओ इसको आम भाषा में बोलते हैं, बॉटल जाओ भी बोलते हैं।
1: मतलब उसके दाढ़
0: जी
1: के नीचे से
0: जी
1: लटक जा
0: जी
1: लटक
0: जी
1: जाता
0: जी
1: है।
0: लटक जाता है। तो ये इसके कुछ मुख्य सिम्टम्स है
1: अच्छा,
0: जिससे कि जानवर को पाई।
1: तो मेरे ख्याल से किसान भाई अगर जो पतला दस्त एकदम पानी की तरह,
0: जी जी
1: आपने कहा
0: जी
1: शूटिंग मतलब एकदम
0: शूटिंग डायरिया
1: फवारे की तरह जो
0: फवारे की तरह
1: निकलता है,
0: निकलता है। जी
1: तो अगर वो देखें तो वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद इस परजीवी के कारण ये
0: जी
1: होता
0: जी
1: है। तो इसको आप लोग कैसे डायग्नोज करते हैं, या
0: जी
1: इसको कैसे निश्चित करते हैं कि ये फैसियोला से ही हुआ है?
0: जी इसको आम प्राय हम लोग लक्षण देखकर पहचानते हैं।
1: अच्छा,
0: और दूसरा चीज़ है अगर हमारे पास लैब है तो हम लोग इसके पैरासाइट के अंडे भी देखते हैं माइक्रोस्कोप में।
1: गोबर टेस्ट
0: जी
1: करते
0: गोबर
1: हैं?
0: टेस्ट करके हम लोग उसको डायग्नोस करते हैं कि ये फेशियोलोसिस है, क्योंकि इससे सिमिलर डिजीजेस भी है जैसे कि एम्फिस्टोमियोसिस है, दूसरे भी है कॉक्सिडियोसिस है,
1: अच्छा, जिसमें जुलाब होती है।
0: जी सिस्टोसोमियोसिस है या ट्राइचुरीस है, दूसरे भी जो पैरासाइट्स है वो भी गोबर में मिलते हैं। तो इसका जो पर्टिकुलर हम लोग आइडेंटिफिकेशन होता है अंडे का, ये गोलाकार होता है, पीले कलर का दिखने का होता है, इससे पहचानते हैं कि ये
1: आप लोग
0: फिशलोसिस
1: अपने मतलब प्रयोगशाला में मतलब इसको देखते हैं कि क्या क्या है करके?
0: जी
1: डॉक्टर
0: जी जी
1: साहब, ये बीमारी जब पशुओं में होती है, तो किसान भाई जैसे कि उनको पता चल गया कि उनके पशु को लीवर फ्लूक हुआ है या फेसियोलाइसिस हुआ है, आप लोगों के पास ले आते हैं, तो किस तरह से आप लोग उसका इलाज करते हैं?
0: लगातार हम लोग किसान भाई को बोलते रहते हैं कि इसका डिवॉर्मिंग ही एकमात्र उपचार है,
1: अच्छा,
0: इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। डिवॉर्मिंग ज़रूरी है
1: डिवॉर्मिंग मतलब कीड़ों को
0: रेगुलर,
1: मारना।
0: जी कीड़ों को मारने वाली दवाई।

0: एंथेलमेंटिक्स जिसको कि हम लोग बोलते हैं हमारी भाषा, इसमें एंथेलमेंटिक देना बहुत ज़रूरी है, डिवॉर्मिंग करना ज़रूरी है। उसमें जो इसके स्पेसिफिक मेडिसिन्स है, जैसे कि ऑक्सीक्लोजेनाइड लिक्विड है जो, उसके बाद रेफॉक्सनाइड है, फिर एल्बेंडाजोल मेडिसिन भी यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये
1: अच्छा
0: बहुत इफेक्टिव है इसके लिए। लेकिन किसान भाइयों को चाहिए कि इस तरह के लक्षण देके तुरंत पास वाली वेटनरी डिस्पेंसरी में कांटेक्ट करें और इसका उपचार कराएं,
1: अच्छा
0: डिवॉर्मिंग कराएं जानवर को।
1: तो अगर फेस्योलाइसिस हुआ है या लिवर फ्लू की बीमारी हुई है, किसान भाई देर करते हैं, तो क्या इससे पशुओं के जान को भी कोई खतरा हो सकता है?
0: मैं तो बताया लक्षण कि जान को खतरा निश्चित है कि इसको लीवर कंटिन्यू डैमेज होगा, क्रॉनिक हो जाएगा इन्फेक्शन, तो मर भी सकता है जानवर।
1: अच्छा
0: तो 1 से 1.5 महीने या 2 महीने में कम से कम डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है
1: अच्छा
0: इसके लिए
1: मतलब बीमारी हो चाहे ना हो,
0: जी। यहाँ के जो हमारी क्लाइमेट
1: वातावरण
0: है,
1: के
0: वातावरण
1: हिसाब
0: के हिसाब
1: से,
0: से
1: मतलब हर 2 महीने में।
0: हर 2 महीने में कम से कम डिवॉर्मिंग
1: अच्छा,
0: करना है, करना है
1: और ये जो बीमारी, जैसे आपने
0: ज़रूरी है
1: आपने कहा कि ये गाय भैंस बकरी सब में देखी गई है,
0: जी।
1: सब में ये समान रूप से पाई जाती है या कोई जानवर इससे ज़्यादा प्रभावित होता है? आप लोगों ने क्या देखा है हमारे इन द्वीपों में?
0: नहीं, सभी जानवर ज़्यादातर तो गाय बैल भैंसी ये तो अफेक्ट होते हैं, साथ साथ में बकरी में भी देखने को मिलता है,
1: अच्छा, सिर्फ जो लक्षण है वो लगभग समान ही है।
0: लगभग समान है जी।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, इससे बचाव के लिए आपने एक तो बताया कि हर 2 महीने में अगर कीड़े मारने की दवा दे तो बहुत अच्छी बात होती है,
0: जी
1: इसके अलावा भी कुछ सावधानी किसान भाई बरत सकते हैं?
0: जी इसका बचाव के लिए जैसा कि हम बताते रहते हैं कि अगर पानी जमा है, पानी को जमने ना दें,
1: अच्छा।
0: जानवर जहाँ रहते हैं चारों तरफ। दूसरा है कि उसका जो घोंघे रहता है, जो घोंघा इसका इंटरमीडिएट होस्ट है, जो बीमारी को बढ़ावा देता है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। उसको ख़त्म करने के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड उसका ना होने दे, पानी जमा ना होने दे, उसके फिशिंग नेट लगा सकते हैं, फिशिंग नेट से घोंघे को उठा के मार सकते हैं। वो मैकेनिकल कंट्रोल में, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम लोग बोलते हैं कि बतख पालिया,
1: अच्छा,
0: बतख
1: वो छोटे
0: उसको
1: छोटे
0: खाता
1: घोंगे
0: है,
1: उसको खा लेते
0: उसको
1: हैं।
0: खा लेता है। इसका लिमनिया स्नेल है ये जो बीमारी को फैलने वाला,
1: छोटे
0: जी
1: छोटे
0: लंबा
1: मतलब
0: लंबा
1: लंबा
0: से
1: सा।
0: ऐसा रहता है जी। फिर फ्रॉक्स को छोड़ सकते हैं जहाँ पानी जमा हुआ है उस इलाके में। फिर कुछ मेनलैंड में जैसे लोग साइंटिस्ट वगैरह बोलते हैं कि इसको बेरी है, शिकाकाई है, पेड़ लगाने से भी इसमें बचाव होता है
1: अच्छा,
0: बीमारी से,
1: मतलब मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो छोटे छोटे जो घोंगे होते हैं उनको बढ़ने से रोका
0: उनको
1: जाए,
0: रोका जाए।
1: क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो जीवन चक्र
0: जी
1: इसका
0: जी
1: टूट
0: जी
1: जाता
0: जी
1: है
0: जी
1: और ये बीमारी फैलने
0: नहीं
1: से रुक
0: रुक
1: जा
0: रुक
1: रुक
0: सकते
1: सकती है। तो डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर जैसे कि आपने बताया कि ये जो परजीवी से जो बीमारी होती है, इससे जानवरों में जो फवारी की तरह दस्त होती है, इसे किसान भाई पहचान सकते हैं
0: जी।
1: और बिना देर के अगर अस्पताल अपने पशुओं को पहुंचाते हैं तो समय पर, जब दवाई आप लोग जब देते हैं इसको तो जल्दी इसमें
0: जी
1: नियंत्रण हो
0: कंट्रोल हो
1: जाता है,
0: जाता
1: ऐसी कोई दिक्कत
0: है, ऐसा
1: वाली
0: कुछ
1: बात
0: नहीं
1: नहीं
0: है,
1: है। और हर 2 महीने में अगर कीड़े मारने की दवा दी जाए तो सबसे
0: बहुत अच्छा
1: उत्तम
0: रहेगा,
1: उत्तम
0: उत्तम
1: रहता है।
0: रहता है जी।
1: चलिए, तो डॉक्टर सुभाष पालवे, आज आप कार्यक्रम में आए और आपने पशुओं में होने वाली ये जो बीमारी है लिवर फ्लू, जिसे फेसियोलोसिस भी कहते
0: जी
1: हैं, इसके बारे में हमारे किसानों को अच्छी जानकारी दी है।
0: जी
1: धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आपने डॉक्टर सुभाष पालवे जी से की गई ये बातचीत सुनी, जिसका विषय था पशुओं में लिवर फ्लू।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: अब आइए कार्यक्रम के रुख को बदल कर ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अभी आपने ये गीत सुना और हमें लगता है कि इस गीत को आपने जरूर पसंद किया होगा।
1: किसान साथियों, कैच द रेन अभियान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय जल संरक्षण अभियान है। इसका उद्देश्य वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को बचाना और उसका अधिकतम उपयोग करना है। अभियान का नारा है, जहां बारिश हो, जब भी बारिश हो, वर्षा जल को संचित करो। अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं भू जल स्तर को सुधारना, जल की बर्बादी को रोकना, तालाबों, कुओं और जलाशय का संरक्षण एवं पुनर्जीवन करना, लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना। और भाइयों, अभियान के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य हैं घरों और सरकारी भवनों में वर्षा के जल संचयन प्रणाली स्थापित करना है, तालाबों, झीलों और कुओं की सफाई एवं मरम्मत करना, नए जल संरक्षण ढांचे बनाना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, गाँव और शहरों में जल संरक्षण संबंधी जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। इस अभियान से भविष्य में जल संकट को कम करने में सहायता होगी। किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा, भू जल स्तर बढ़ने से पेयजल की उपलब्धता में भी सुधार होगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ये अभियान जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। तो साथियों, इस अभियान के साथ जुड़े, जल को संरक्षित करें और जीवन को खुशहाल बनाएं, क्योंकि जल ही जीवन है।
0: अब आइए, जैसा कि कार्यक्रम में कुछ और समय बचा है, हम आपको दे देते हैं ये छोटी सी जानकारी, जिसका विषय है मुर्गियों में बौनीपन का रोग।
1: किसान भाइयों, आइए आज कुछ बातें करते हैं मुर्गियों में बौनेपन के रोग के संदर्भ में, यानी स्टेंटिंग सिंड्रोम के बारे में। ये मुख्यतः मांस वाली मुर्गियों में यानी बॉयलर्स में होता है, जिससे मुर्गी की बढ़वार रुक जाती है और ज्यादा दाना खाने के बाद भी मुर्गी का वजन नहीं बढ़ पाता। मुर्गियों में 1 से 2 सप्ताह की उम्र में इस रोग के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। बौनेपन का रोग मुख्य रूप से मांस वाली मुर्गियों का रोग है, जिससे प्रभावित मुर्गियों का वजन कम रह जाता है और वे छोटे आकार की रह जाती हैं। प्रायः देखने

0: में आया है कि 5 से 20% तक मुर्गियां छोटी रह जाती हैं। प्रभावित मुर्गियों के पंख भी बिखरे हुए रहते हैं तथा इन मुर्गियों को दस्त की समस्या रहती है। मुर्गियों की टांगे भी कमजोर रह जाती हैं और अपच तथा शोषण की कमी से मुर्गियों का मल स्लेटी रंग के सीमेंट की तरह हो जाता है, जो कि मल द्वार के चारों ओर चिपक जाता है और ऐसा आभास होता है कि मल द्वार पे सीमेंट लगा हो। इस दशा को पेस्टिवेंट कहते हैं, जो मुर्गियों के बौनेपन का एक मुख्य लक्षण है। प्रभावित मुर्गियों की टांगों का रंग भूरा हो जाता है और वे कमजोर हो जाती हैं। मुर्गियों के मल में अपच दाना दिखाई देता है, जिसके कारण वे अधिक दाना खा कर भी कमजोर रह जाती हैं। प्रभावित मुर्गियों की कलगी व गले के वेटर भी भूरे रंग के हो जाते हैं। मुर्गियों में खून की कमी व म्यूकस झिल्लियां हल्के भूरे व पीले रंग की दिखाई देती हैं। किसान भाइयों, ऐसी दशा में प्रभावित मुर्गियों की मांसपेशियां सूखने लगती हैं, जिससे मुर्गी और कमजोर हो जाती है। इस रोग में मुर्गी का वजन प्रथम 2 सप्ताह में ही कम होने लगता है तथा 4 सप्ताह तक ये सबसे अधिक अंतर वाला होता है और 4 सप्ताह बाद प्रभावित मुर्गी रोग से ठीक होने लगती है, लेकिन फिर भी उसका वजन सामान्य से कम रहता है। बौनेपन के रोग वैसे तो कई कारणों से हो सकते हैं, मगर इसमें विषाणु की मुख्य भूमिका होती है तथा ये एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी में फैलकर अधिक नुकसान पहुंचाता है। साथियों, अगर मुर्गियों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए तो इस बीमारी को कम करने में काफी मदद मिलती है। इस रोग का निदान मुर्गियों के विषय में जानकारी, हैचरी से संबंधित जानकारी, लक्षण व शव परीक्षण द्वारा ही किया जा सकता है। आमतौर पर बौनेपन का रोग किसी भी फार्म पर मुर्गियों को 5 से 20% तक प्रभावित कर सकता है। अगर पता चलते ही प्रभावित मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर दिया जाए तो रोग को फैलने से रोका जा सकता है। किसान भाइयों, इस रोग से बचाव के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चूजे खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चूजों के माता पिता यानी ब्रीडर स्टॉक में रोग के विषाणु ना हो और इसके लिए मुर्गियों के रक्त का समय समय पर परीक्षण करते रहना चाहिए। अंडे देने वाली बड़ी मुर्गियों में टांगों के जोड़ों में सूजन दिखाई देती है, जो रियो विषाणु से ही होती है। इन मुर्गियों से अंडों की योक में संक्रमण चला जाता है। हैचरी में सफाई की उचित व्यवस्था समय समय पर करते रहना चाहिए। हैचरी से भी इस रोग के विषाणु चूजों तक पहुंच जाते हैं। किसान भाइयों, मुर्गी फार्म पर सफाई की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। विशेष रूप से मुर्गी रखने के 2 बैच के बीच संक्रमण हारी दवाओं से मुर्गी फार्म की सफाई करनी चाहिए और 2 मुर्गियों के बैचों के बीच में कम से कम 30 दिन का अंतर अवश्य रखना चाहिए। मुर्गियों की परवार पर भी नजर रखनी चाहिए और जैसे ही पता चले कि झुंड में कुछ मुर्गियों का वजन कम हो रहा है या उनकी बढ़वार नहीं हो रही है तो ऐसी मुर्गियों को झुंड से अलग कर देना चाहिए ताकि संक्रमण आगे ना बढ़े। रियो विषाणु यानी बौनेपन का जो कारक होता है, इसके खिलाफ टीका भी उपलब्ध है। इसके लिए आप पशु चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं।
1: मुर्गियों में बौनेपन का रोग, साथियों, अब इस विषय पर आपने छोटी सी जानकारी हासिल की और अब वक्त हो चला है आज आपसे पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर देने का। हमने आपसे पूछा था, कीटनाशकों की छिड़काव के दौरान हवा की दिशा पर ध्यान देना चाहिए या नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, कीटनाशकों के छिड़काव के दौरान हवा की दिशा पर ध्यान देना चाहिए। छिड़काव हमेशा हवा की दिशा में ही करनी चाहिए। तो अब आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इसी के

सात घड़ी की सुई अब हमें इशारा कर रही है कि आज के हमारे कृषि जगत कार्यक्रम को अब हमें यहीं पर रोकना होगा। लेकिन साथियों, इस वादे के साथ कि कल शाम 6 बजे हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नई जानकारी लेकर। और अब जोया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पॉप मसाला। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म दम मारो दम से। गायक है किरण कामत, गीत जयदीप शानी का तथा संगीत प्रीतम का है।

केके और पलक मुच्छल को सुनते हैं फिल्म एक था टाइगर में। अवंतिता दत्त के गीत को संगीत सजाया है सोहेल सेन ने।

लीजिए अब सुनिए। फिल्म एक खिलाड़ी एक हसीना में बंटी राजपूत और सुनिधि चौहान को देव कोहली के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, अब एक सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी श्री विजयपुरम के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रेडियो कार्यक्रमों के चयन हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रण सूचना NIPP के अंतर्गत कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्रस्ताव इन तीनों श्रेणियों में आमंत्रित किए गए हैं: राजस्व साझेदारी मोड, प्रायोजित कार्यक्रम मोड तथा निःशुल्क मोड। कार्यक्रमों में रेडियो नाटक, वृत्तचित्र, कहानी वाचन, ऑडियो श्रृंखला, नवाचारी ऑडियो प्ररूप, पॉडकास्ट, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा संगीत आधारित कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम हिंदी में हो

0: होगा और प्रत्येक एपिसोड की अवधि 14 या 28 मिनट तक होनी चाहिए। इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 तथा उसके नवीनतम संशोधनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इस नीति में पात्रता, कार्यक्रम संबंधी दिशा निर्देश, अनुबंध की शर्तें, राजस्व साझेदारी, आकाशवाणी प्रसारण संहिता तथा वाणिज्य विज्ञापन संहिता से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। पात्र आवेदक निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक विवरण एवं सहायक दस्तावेजों सहित अपना प्रस्ताव ईमेल hoo@prasarbharti.gov.in पर भेज सकते हैं। विस्तृत दिशा निर्देश एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए प्रसार भारती तथा आकाशवाणी की आधिकारिक वेबसाइट prasarbharti.gov.in/nipp, akashwani.gov.in/files/nipp.pdf देखें। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। ये सुनहरा अवसर न चुके अपने रचनात्मक कार्यक्रमों को भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक तथा प्रसारक तक पहुंचाने के लिए आज ही अपना प्रस्ताव भेजें। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पॉप मसाला में आपका पुनः स्वागत है। लीजिए अब सुनिए फिल्म हिट स्टोरी 2 का ये गाना। गायक कलाकार है मीत ब्रोस अनजान और खुशबू ग्रेवाल।
1: Put your hands up. Yeah, the meat.

मोहित चौहान को सुनते हैं फिल्म हीरोपंती में। कौसर मुनीर के गीत को साजिद वाजिद ने संगीतबद्ध किया है।

लीजिए अब सुनिए, वाजिद सुनिधि चौहान सुजिन डिमेलो को फिल्म हाउसफुल 2 में गीत समीर अंजान का, संगीत साजिद वाजिद का है।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पॉप मसाला अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 MHz पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं।

श्रोताओं, अब हम आपको आज की सभा के कुछ कार्यक्रमों के बारे में बता दें। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं आप सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर युवाणी में गजलों पर आधारित कार्यक्रम आप सुन पाएंगे कहकशा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आप आनंद ले पाएंगे 8:15 पर। 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा और 10:00 फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे संदेश आते हैं। ये तो थे आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रम। और अब कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें। कल पहली सभा के कार्यक्रम है में आप सुनेंगे सुबह 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स में जानेंगे बछड़ों में अतिसार व बचाव के बारे में 5:55 पर। 6:10 पर जलयानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा बाहर शीर्षक पर 6:15 पर। सुबह 7:00 आप सुन पाएंगे जन सूचनाएं। 7:15 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम देश रागनी आप सुनेंगे। इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भोले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर खेल जगत कार्यक्रम होगा और कुछ फिल्मी गीत सुनवाया जाएगा। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सलमा आगा और जगजीत सिंह को सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का आप आनंद ले पाएंगे 9:00। ये तो थे कल सुबह में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: ये देख कैसे।
4: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: दीका
5: हाँ, मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
6: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
7: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
8: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
6: आई नो ना।
8: आरबीआई कहता है
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से सीमावर्ती गांवों से जुड़कर विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का किया आह्वान। लोक परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए लोकसभा में परीक्षा सुधार की दिशा में संशोधन विधेयक पेश किया गया। परिवहन निदेशालय श्री विजयपुरम ने वाहनों की मरम्मत और कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए अनुभवी फर्मों से पंजीकरण आवेदन आमंत्रित किए और अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा मुख्य भूमि के संस्थानों में द्वीप समूह के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित सीटों की मेरिट सूची जारी की गई। सांध्य समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों से अपना जुड़ाव मजबूत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए विकसित गांवों को विकसित भारत की नींव बताया। प्रधानमंत्री ने मेरा युवा भारत माई भारत मंच के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में युवाओं की बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवा न केवल विकसित भारत के प्रेरक बल हैं, बल्कि इसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। श्री मोदी ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने और समाधान खोजने की दिशा में लगाया जाता है तो देश का भविष्य उज्ज्वल होता है। उन्होंने कहा कि जब युवा यथार्थ की धरातल से जुड़ते हैं तो वे समावेशी विकास की दिशा में भारत की यात्रा को मजबूत करते हैं। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने सदस्यों से सहयोग और सार्थक चर्चा की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय पारदर्शी होनी चाहिए और प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर

एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है परिवहन और मेरिट सूची। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। परिवहन निदेशालय श्री विजयपुरम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न मरम्मत कार्यों तथा परिवहन विभाग के वाहनों के कलपुर्जों और हार्डवेयर सामग्री की आपूर्ति के लिए योग्य और अनुभवी फर्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन का निर्धारित प्रपत्र और दिशा निर्देश विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसके साथ ही फर्में अनुसूची में दिए गए एक या अधिक कार्यों के लिए अलग अलग आवेदन कर सकती हैं। इच्छुक फर्में 3 अगस्त तक किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच परिवहन निदेशालय के खरीद अनुभाग से संपर्क कर सकती है। कैंपबेल बे में रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान सहायक आयुक्त श्याम खासी धावा ने आश्वासन दिया है कि इस महीने के अंत तक एक मालवाहक पोत के माध्यम से 1,800 गैस सिलेंडर भेजे जाएंगे। इसके अलावा नौसेना के जहाज से 250 सिलेंडर और प्रशासनिक मालवाहक पोत एमवी चुगलुम के माध्यम से 259 सिलेंडर मंगाने के प्रयास जारी है। वहीं अगस्त महीने में मनाव स्टार कार्गो शिप के जरिए 2,000 सिलेंडर लाने की योजना है। गैस आपूर्ति की मांग को लेकर आयोजित यह शांतिपूर्ण धरना सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक चला। इस आंदोलन में तीनों पंचायतों के पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के साथ साथ बड़ी संख्या में आम जनता ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के सचिवालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मुख्य भूमि के संस्थानों में BDS, BAMS, BHMS, MBBS और BAMS मलयाली मूल पाठ्यक्रमों में द्वीप समूह के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की मेरिट सूची जारी की है। सभी पात्र उम्मीदवारों की अनंतिम मेरिट सूची कल से कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी। उम्मीदवार दावे या आपत्तियां 31 जुलाई को शाम 5 बजे तक सहायक सचिव उच्च शिक्षा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय श्री विजयपुरम के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे या आपत्तियां उम्मीदवार के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। आवेदन में उम्मीदवार का नाम और पता, शिकायत या दावे का विवरण, पंजीकरण संख्या, पाठ्यक्रम का नाम, श्रेणी तथा अनंतिम मेरिट सूची में क्रम संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त किसी भी दावे या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। डॉ बीआर अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान पोर्ट ब्लेयर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के विभिन्न डिप्लोमा कार्यक्रमों में अतिथि संकाय सदस्य और अंशकालिक प्रशिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 1 अगस्त को संस्थान में आयोजित किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रतियां तथा सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे। साक्षात्कार और डेमो विषयों की जानकारी संस्थान की वेबसाइट dibrate.andamannikobar.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। उधर पॉलिटेक्निक डिग्लीपुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न डिप्लोमा कार्यक्रमों में अतिथि संकाय सदस्य और अंशकालिक प्रशिक्षकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार 4 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। योग्यता साक्षात्कार कार्यक्रम और डेमो विषयों का विवरण संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पात्र उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र की प्रतियां अकादमिक सेल डिब्रेट में जमा करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक डिब्रेट और सरकारी पॉलिटेक्निक डिग्लीपुर के अकादमिक सेल से संपर्क कर सकते हैं। महात्मा गांधी

के महाविद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए संसाधन व्यक्तियों और अतिथि संकाय का अध्यतन पैनल जारी कर दिया है। यह पैनल महाविद्यालय की वेबसाइट तथा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। चयनित उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए रिपोर्टिंग के समय अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ स्थानीय प्रमाण पत्र लाने होंगे। गैर स्थानीय उम्मीदवारों के लिए डेमो कक्षाएं ऑनलाइन जबकि स्थानीय उम्मीदवारों के लिए ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। डेमो कक्षाओं की तिथि और समय की जानकारी उम्मीदवारों को फोन के माध्यम से दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से सीमावर्ती गांवों से जुड़कर विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का किया आह्वान। लोक परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए लोकसभा में परीक्षा सुधार की दिशा में संशोधन विधेयक पेश किया गया। परिवहन निदेशालय श्री विजयपुरम ने वाहनों की मरम्मत और कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए अनुभवी फर्मों से पंजीकरण आवेदन आमंत्रित किए। और अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा मुख्य भूमि

गैर स्थानीय उम्मीदवारों के लिए डेमो कक्षाएं ऑनलाइन जबकि स्थानीय उम्मीदवारों के लिए ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। डेमो कक्षाओं की तिथि और समय की जानकारी उम्मीदवारों को फोन के माध्यम से दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से सीमावर्ती गांवों से जुड़कर विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का किया आह्वान। लोक परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए लोकसभा में परीक्षा सुधार की दिशा में संशोधन विधेयक पेश किया गया। परिवहन निदेशालय श्री विजयपुरम ने वाहनों की मरम्मत और कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए अनुभवी फर्मों से पंजीकरण आवेदन आमंत्रित किए। और अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा मुख्य भूमि के संस्थानों में द्वीप समूह के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित सीटों की मेरिट सूची जारी की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी?
2: हाँ।
1: नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एकाध स्थानों पर वर्षा हुई। जन सेवाओं के लिए कोई सूचना नहीं है। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार के तटीय इलाकों पर 35 से 45 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में ना जाएं। ये था मौसम का हाल।

जहाज यानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलयानों के यात्रा कार्यक्रम एमवी स्टेट आइलैंड 29 तारीख को सुबह 7 बजे माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 30 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम आएगा। लिटिल अंडमान जाने के लिए एमवी कैमल बे 28 तारीख को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान उसी दिन रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार की यात्रा पर 1 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी 2 तारीख को शाम 4 बजे कार्निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी सेंटिनल 13 तारीख को सुबह 7 बजे लिटिल अंडमान कार्निकोबार चौरा त्रेसा कचाल नैनकोरी माकाचुहा और अराफा बे होते हुए कैमल बे की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 16 तारीख को रात 9 बजे कैमल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस पहुँचेगा। जलयान नालंदा नैनकोरी होते हुए कैमल पे जाने के लिए 28 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा और 30 तारीख को सुबह 8 बजे कैमल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी स्टेट आइलैंड कल सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम पहुँचेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी रंगत कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम आएगा।

एमवी बम्बोका कल दिन में 11 बजे शहीद द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी जोलीबाई कल दिन में 11:30 पर स्वराज द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी हडबे कल दोपहर बाद 2:30 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम पहुँचेगा। एमवी बाराटन कल शाम 5 बजे स्वराज द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान 29 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। जन सूचनाएं, इसके अंतर्गत सुनिए एक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुए। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

अलका याग्निक और सुखविंदर सिंह को सुनते हैं फिल्म किसना द वेरियर्स पोएट में। इस्माइल दरबार का संगीत है।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 27 जुलाई है और आज के दिन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि भी है। दोस्तों, वर्ष 2015 में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलोंग में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय उनका निधन हो गया था। डॉक्टर कलाम ने भारत के रक्षा एवं अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर परिश्रम करने की प्रेरणा दी। उनका प्रसिद्ध विचार था, सपने वह नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वह हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनका सरल व्यक्तित्व, विनम्रता, राष्ट्रभक्ति और शिक्षा के प्रति समर्पण आज भी करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके आदर्श सदैव भारत का मार्गदर्शन करते रहेंगे। दोस्तों, आज इस माह का चौथा सोमवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। अपने दर्द को अपने आंसुओं से मिला देना है, अपने दर्द को अपने आंसुओं से मिला देना है, उनके साथ की हर मुलाकात को भुला देना है। अपने दर्द को अपने आंसुओं से मिला देना है, उनके साथ की हर मुलाकात को भुला देना है। अपने जहन से, अपने जीवन से, अपने जहन से, अपने जीवन से उनकी हर याद को मिटा देना है।

खुशियों का इंतज़ार कर रहे थे पर वो कहाँ है आए। खुशियों का इंतज़ार कर रहे थे पर वो कहाँ है आए। उम्मीद हारे चैन गवाए बैठे हैं हम अश्क छुपाए। रुकना मुनासिब नहीं है अब, रुकना मुनासिब नहीं है अब, लेकिन अपने गमों को लेकर आखिर हम कहाँ जाएं।

हालातों से हार कर तकलीफ तो होगी ही, शिद्दत से पाना चाहोगे अगर किसी को, शिद्दत से पाना चाहोगे अगर किसी को, मशक्कत तो होगी ही। छाँव अगर मंजिल है तब भी, छाँव अगर मंजिल है तब भी, उस तक जाने के सफ़र में धूप तो होगी ही, धूप तो होगी ही।

रोने का आलम है मगर आंसू भी अब आते नहीं। रोने का आलम है मगर आंसू भी अब आते नहीं। थक गया हूँ दर्द से, दिल को मरता पर मारते नहीं। लोग कहते हैं मुस्कुराते रहो, वक्त सब ठीक कर देगा। लोग कहते हैं मुस्कुराते रहो, वक्त सब ठीक कर देगा। किसे बताऊं कि वक्त गुज़र जाता है, ज़ख्म जाते नहीं। किसे बताऊं कि वक्त गुज़र जाता है, ज़ख्म जाते नहीं।

तो दोस्तों, इसी नज्म के साथ हमारा आज का यह कहकशां कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। वादा करते हैं जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त दीपक कुमार सिंह को अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। सरकार ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया। नीट प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर चर्चा शुरू कराने पर जोर दिया। अध्यक्ष ने सरकार और विपक्षी दलों से आज शाम तक सहमति बनाने की भी अपील की। सदन की बैठक दो बार स्थगित होने के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो अध्यक्ष ने कहा कि मैं आपको 3 घंटे का समय देता हूं, शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे तक इस विधेयक पर चर्चा शुरू हो सके। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत, उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक प्रश्न पत्र लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश और दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड पर प्रावधान कर करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी दलों के सदस्यों के मत और विचार आने चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं होता। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय देने तथा सदस्य चाहें तो और भी अधिक समय देने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर संशोधन के कई नोटिस आए हैं, जिसका मतलब यह है कि कई सदस्य इस विधेयक पर अपना मत रखना चाहते हैं। उन्होंने आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर ये चर्चा रोकने के लिए नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, युवाओं की इस पर नजर है, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा रोककर ये गलत संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस से अनुरोध है कि अपने साथियों को समझाएं और चर्चा शुरू करें। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू

ने वेटलिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने भारोत्तोलन में ही रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानम्बम और राजा मुथु पांडी तथा कांस्य पदक विजेता पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। श्री बिरला ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद जब अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे को लेकर और गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। श्री बिरला ने आसन के समीप हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो सदन की मर्यादाओं और उसकी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा न थमने पर भी बिरला ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसमें संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव भी है। शाम 5 बजे बैठक फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी संशोधन के नोटिस दिए हैं तथा वे भी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने कहा, फिर भी कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस के लोग ऐसा न करें। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने विपक्षी सदस्यों से चर्चा शुरू कराने में सहयोग करने का आग्रह किया और अपनी अपील का असर न होते देख कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज बार बार बाधित हुई। 4 बार के स्थगन के बाद अपराह्न शाम करीब 5:15 बजे कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और विधायी कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष ने मांग की कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग के मुद्दे पर गृहमंत्री सदन में आए और बयान दें। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व के मुद्दे उठाने को कहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। सभापति से अनुमति मिलने पर विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है। सभापति ने कहा कि वो नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री राधाकृष्णन ने अपने पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नियम 267 के तहत केवल दिन की कार्यसूची में शामिल विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है और वो भी विरलतम परिस्थितियों में तथा सदन की सहमति से। उन्होंने श्री खड़गे से कहा कि सभापति को नियमों के अनुसार चलना है या नियम तोड़ने हैं, आप ही बताइए। श्री खड़गे ने कहा कि अतीत में महत्वपूर्ण अवसरों पर नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस स्वीकार किए गए हैं।

श्री राधाकृष्णन ने कहा कि केवल विरलतम परिस्थितियों में ही ये संभव है। श्री खरगे ने कहा कि वो जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई ऐसा ही मामला है। इस पर सभापति ने कहा कि असाधारण परिस्थिति होने के साथ इस पर पूरे सदन की सहमति भी चाहिए, वो नहीं है तो वो क्या करें। श्री खरगे ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन छात्रों के खिलाफ पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़कों को पीटा गया और उन्हें पैलेट से निशाना बनाया गया। सभापति ने उनसे कहा कि वो शून्यकाल चलने दें। इस पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर से छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि निर्दोष छात्रों को पीटा गया, उन पर लाठियां चलाई गई और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मांग की गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान दें। विपक्षी सांसद गृहमंत्री को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि उनकी पार्टी ने नीट परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हर परंपरा में अपवाद की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि इतने सारे छात्रों ने आत्महत्या की, सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उनकी जिंदगी वापस नहीं लौटा सकती। श्री शिवा ने कहा कि उन्होंने भी नीट के मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत दिए जा रहे नोटिस लंबे समय से स्वीकार नहीं किए जा रहे। नियम 267 के तहत सदन में सूचीबद्ध सभी काम रोककर किसी विषय पर चर्चा कराई जाती है। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों का खून बहा है, लोकतंत्र की जननी राजधानी इस देश के निर्दोष बच्चों के खून से रंग गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी संतोष कुमार ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाना चाहा। सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर विरोध जता रहे थे जबकि विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। ये विधेयक उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया। इस विधेयक पर सदन में चर्चा आज होनी थी। श्री हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू करानी चाहिए, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, माकपा के जॉन ब्रिटास और द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। उपसभापति ने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न विधेयक से संबंधित ही होना चाहिए। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय से विधेयक पर चर्चा को शुरू करने से पहले विधेयक के बारे में बोलने को कहा। इसी दौरान हंगामा और तेज हो गया और कुछ सदस्य अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। श्री हरिवंश ने कहा कि मानसून सत्र शुरू हुए 1 सप्ताह हो चुका है और अब तक कोई भी कामकाज हो नहीं पाया है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने, अपने स्थानों पर लौट जाने और विधेयक पर चर्चा शुरू करने की अपील की। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर उप

सभापति हरिवंश ने फिर से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और विधेयक पर चर्चा की अपील की, लेकिन सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी इस अपील का कोई असर न हुआ। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 5:15 बजे बैठक शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों का हंगामा भी फिर से शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने कार्य मंत्रणा समिति में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में मौजूद हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाइए जो हंगामा कर रहे हैं।

0: ने कार्य मंत्रणा समिति में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में मौजूद हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाइए जो हंगामा कर रहे हैं। बाहर जाकर आप कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन यहां आपके आगे हम अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी आप चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे। श्री खड़गे ने कहा कि वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गृह मंत्री स्वयं सदन में आए, उपस्थित हों और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर बयान दें। हंगामे की वजह से उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 8:15 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए फिल्म अनामिका के एक गीत के साथ। मजरू के बोल को सुरों में पिरोया है राहुल देव बर्मन ने।

किशोर कुमार और सुषमा श्रेष्ठ को सुनते हैं फिल्म आ गले लग जा में। साहिर लुधियानवी के गीत को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। पर्यावरण एवं वन विभाग के अंतर्गत APCCF नोडल अधिकारी, FCA एवं MS अंडमान एवं निकोबार तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण, अंडमान एंड निकोबार CZMA द्वारा संविदा आधार पर कंसल्टेंट के दो पदों पर योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 40,000 रुपये का समेकित मानदेय प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति का स्थान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह होगा। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फॉरेस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान, मैरीन बायोलॉजी, ओशन स्टडीज अथवा समकक्ष विषय में स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। साथ ही पर्यावरण अध्ययन, इम्पैक्ट असेसमेंट, एकोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, रिस्क एनालिसिस अथवा पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित कार्य अनुभव तथा MS ऑफिस का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन 100 अंकों की वेस्टेज अधिक आधारित मूल्यांकन प्रणाली द्वारा तथा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। केवल शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र अंडमान एवं निकोबार वन विभाग तथा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की वेबसाइट https://forest.and.nic.in एवं https://andaman.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतियों सहित कार्यालय APCCF वन सदन हेडो श्री विजयपुरम में केवल ऑफलाइन जमा करना होगा। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 29 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए विभाग से संपर्क किया जा सकता है। उधर अंडमान एवं निकोबार केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन तथा राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों में MIS डेटा एनालिस्ट का एक पद, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के दो पद, अकाउंटेंट का एक पद तथा HMIS असिस्टेंट के 6 पद शामिल है। चयनित अभ्यर्थियों को MIS डेटा एनालिस्ट पद के लिए 40,000 रुपये प्रतिमाह, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एवं अकाउंटेंट पद के लिए 30,000 रुपये प्रतिमाह तथा HMIS असिस्टेंट पद के लिए 20,000 रुपये प्रतिमाह का समेकित मानदेय प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता प्रत्येक पद के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। MIS डेटा एनालिस्ट पद के लिए BE, BTEC या MCA या MBA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अथवा समकक्ष योग्यता के साथ संबंधित 6

0: क्षेत्र में कार्य अनुभव आवश्यक है। MPH मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ अथवा समकक्ष योग्यता भी मान्य है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, संबंधित तकनीकी योग्यता तथा TIA A+ एवं MCSE क्षेत्र का अनुभव अपेक्षित है। अकाउंटेंट पद के लिए MCOM डिग्री के साथ कंप्यूटर का ज्ञान या BCOM डिग्री के साथ लेखा एवं वित्त क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। HMIS असिस्टेंट पद के लिए BCA कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा समकक्ष विषय में स्नातक डिग्री तथा संबंधित अनुभव आवश्यक है। सभी पदों के लिए आयु सीमा 21 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 है। साक्षात्कार संबंधी जानकारी अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही 22 जुलाई का द डेली टेलीग्राम भी देखा जा सकता है। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners, starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
2: Hey, still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
0: लीजिए अब सुनिए संवेद स्वरों में गौरव गान।

अभी आप समवेत स्वरों में गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
2: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
3: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
2: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमार्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की 1 तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इसराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इसराइली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध

0: नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ. अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज हम मच्छरों से होने वाले रोगों और उनके उपचार पर चर्चा करेंगे। मच्छरों से होने वाली बीमारियां भारत सहित दुनिया भर में जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ये वो रोग हैं जो वायरस, बैक्टीरिया या परजीवियों के कारण होते हैं और वाहकों के माध्यम से मनुष्यों तक पहुंचते हैं। ये वाहक आमतौर पर मच्छर, टिक, सैंड फ्लाई और पिस्सू जैसे कीड़े या ऑर्थोपॉड होते हैं, जो संक्रमित जीव से रोगाणु ग्रहण करते हैं और उन्हें दूसरे जीव तक पहुंचाते हैं। सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले संक्रमणों के विपरीत मच्छरों से होने वाले रोग संचरण के लिए इन वाहकों पर निर्भर करते हैं। इन बीमारियों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला ज्वर, जापानी एंसेफेलाइटिस, जीका, स्क्रब टाइफस आदि हैं। बारिश के मौसम में और बारिश के बाद इन बीमारियों का संक्रमण बढ़ जाता है, पर डेंगू का संक्रमण बारिश के अलावा अन्य मौसम में भी देखा जा रहा है। इन बीमारियों से बचने के उपाय और उपचार पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय धारीवाल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्सेंडल @AIRNews अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। सबसे पहले धारीवाल जी, ये बताइए कि मच्छर से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं?
2: देखिए, मच्छर विभिन्न प्रकार के होते हैं। मैं बात वहां से शुरू करना चाहूंगा और उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो समय आपने रखा है वो बड़ा उपयुक्त समय है, क्योंकि अभी बारिशें चल रही हैं और बारिशों की वजह से पानी इकट्ठा होता है और ये जितने मच्छर जनित रोग हैं, मच्छरों की आप लोग देखते होंगे कि संख्या बढ़ जाती है इन दिनों में, तो उसका कारण का अपने को समझना है आज के कार्यक्रम में। और उससे जो होने वाले रोग हैं वो जैसा बताया गया कि कुछ वायरल डिजीज़ हैं, उसमें मुख्य डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानीज एनकेफेलाइटिस है और पिछले कुछ सालों से जिका नाम की बीमारी भी जो है वो अपने देश में रिपोर्ट हुई हैं
0: जी।
2: और कुछ ऐसी जो है वो डिजीज़ हैं जो वनवासी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, जैसे मलेरिया है
0: जी।
2: मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है और फाइलेरिया है, उसका वैसे बारिशों से संबंध नहीं होता। और जो एक नाम लिया गया कालाजार, वो भी जो है वो ज़रूरी है, लेकिन उसका भी बारिशों से कोई ऐसा संबंध नहीं है, वो अलग उसका कीटाणु है, अलग कीट है उसका। सैंड फ्लाई का नाम जैसे आपने लिया, वो उससे जो है वो होता है और ख़ास करके

0: बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कालाजार, और उसके लिए उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है। और लगभग अच्छी बात है कि भारत ने लगभग लगभग उस पर विजय प्राप्त कर ली है, और उसका जो WHO का सर्टिफिकेशन है हमारा, वो हो जाएगा। तो मुख्य बात है कि मच्छर जो है वो इसमें तीन कैटेगरी में रखना चाहूँगा मैं। एक मच्छर जो दिन के समय काटते हैं,
1: जैसे डेंगू के
0: जैसे डेंगू का है, डेंगू और चिकनगुनिया का, मच्छर का नाम आम बोलचाल की भाषा में टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है इसको, जिसको कोई भी व्यक्ति देख करके पहचान सकता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल डॉक्टर ही जो है वो पहचानेंगे, या जो है वो जो विशेषज्ञ हैं वही पहचानेंगे। उसमें स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे टाइगर के शरीर में स्ट्रिप्स होती हैं, वाइट ब्लैक इसी तरह की, तो इसलिए उसको टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है, और वो दिन के समय काटता है। ये इसमें मुख्य बात है।
1: जी
0: और बाकी जो मच्छर होते हैं वो डॉन और डस्क कहा जाता है,
1: जो रात के
0: संध्या के समय पर, या जो है वो प्रातःकाल
1: अर्ली मॉर्निंग
0: अर्ली
1: जी
0: मॉर्निंग का। और तीसरी कैटेगरी होती है जो मिडनाइट में काटने के लिए आते हैं, और खास करके
1: शिफ्ट में आते हैं
0: वो, तो इन लोगों में भी, मच्छरों में, मतलब एक कि उन्होंने अपना समय बांट रखा है, तो ये एक समाज के लिए मैसेज भी है कि देखिए वो अपनी जो है वो प्रजाति को बरकरार रखने के लिए कोई दिन में आता है, क्योंकि जरूरत क्यों पड़ती है उनको, मानव के खून की या पशु के खून की जरूरत मच्छरों को इसलिए पड़ती है कि उनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजाति जो है वो चालू रखने के लिए कोई ना कोई, किसी ना किसी का खून चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल आदमी का ही, व्यक्ति का ही खून जो है वो काम करेगा। जानवरों में उनको जो है वो जूफिलिक जो है वो मच्छर कहा जाता है, कि वो जानवरों पर ज़्यादा जो है वो निर्भर करते हैं। तो ये मुख्य बात अपने को ध्यान रखनी है कि मच्छर दिन में काटने वाले डेंगू करेंगे, और जो सुबह और शाम करने वाले हैं वो ज़्यादातर मॉस्किटो न्यूसेंस मॉस्किटो कहलाते हैं, वो नहीं करते हैं, बीमारी नहीं जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। और ख़ास करके जो नालियाँ वगैरह होती हैं, गंदा जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें उसकी ब्रीडिंग जो है वो ज़्यादा होती है। जो डेंगू का मच्छर होगा वो साफ पानी में, और छोटे छोटे से आपके जैसे बॉटल, बिस्लरी की बॉटल है या कप है,
1: उसमें
0: उसमें
1: भी
0: पानी भी
1: पनपते हैं।
0: इकट्ठा हो गया, तो उसमें भी ब्रीडिंग,
1: तो
0: और 7 दिन लगते हैं उसमें।
1: डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया सब में तेज बुखार आता है, लेकिन अलग अलग हम कैसे पहचानेंगे, लक्षण क्या होते हैं अलग अलग उनके?
0: देखिए डेंगू का लक्षण एक आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर, कि उसमें बुखार बहुत तेज होगा, और उसके साथ उसको बॉडी एक जो है वो बहुत सीवियर होगा, और उसमें एक खास लक्षण होता है कि रिट्रो जो आईज हैं, आई बॉल, उसके चारों तरफ जो है वो दर्द जो है वो रहता है, और चकत्ते हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक डेंगी में खास करके ये संभावना होती है कि खून वगैरह निकल सकता है।
1: और चिकनगुनिया में
0: चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द जो है वो होता है बुखार के साथ में।
1: और मलेरिया में डॉक्टर पीयूष?
2: जी, ये तीनों बुखार जो हैं पोस्ट मानसून सीजन में पाए जाते हैं। अगर पहला बुखार बहुत तेज हो, जैसे बुखार शुरू हुआ और बहुत तेज बुखार हुआ और शरीर पे लाल रंग के रैसेस हुए, और जैसा सर ने बताया कि ये तेज दर्द के साथ अगर ये होता है तो ऐसा माना जा सकता है कि ये डेंगू हो सकता है, आंखों के पीछे का दर्द इसका ही है। मलेरिया में बुखार पैरोक्सिज्म में आता है, यानी कि थोड़े समय तक बुखार आया, जा रहा, कपकपी के साथ बुखार आया, ठीक हो गया। और अगर चिकनगुनिया में जो जोड़ों में दर्द होता है वो बुखार के बाद के समय में पाया जाता है,
1: मतलब बुखार ठीक होने के बाद
2: के बाद
1: होता
2: में,
1: है।
2: ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, जो दीर्घकालिक जो जटिलताएं के रूप में हम लोग इसे कहते हैं।
1: अच्छा, हमारे एक श्रोता जुड़ चुके हैं, योगेश जांगरे छत्तीसगढ़ से। योगेश जी
3: जी नमस्ते।
1: नमस्ते योगेश जी, अपना सवाल पूछिए।
3: हम ये जानना चाहते हैं, दो प्रश्न है।
1: जी
3: पहला ये है कि ये मच्छर जनित रोग क्या जानलेवा भी हो सकते हैं, और दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे आसपास की साफ सफाई में हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है?
0: देखिए, जहां तक योगेश जी जानलेवा की

0: बात है तो ये बीमारियां, और क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से आते हैं और छत्तीसगढ़ में खास करके मलेरिया का प्रकोप पहले बहुत होता था, और आपको शायद जानकारी होगी। आप कौन से जिले के हैं छत्तीसगढ़ में?
1: अभी हमारा संपर्क उनसे
0: अच्छा,
1: टूट गया,
0: कोई बात
1: हालांकि वो
0: नहीं।
1: हमें सुन पा रहे हैं। आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। जी
0: छत्तीसगढ़ में मलेरिया का जो उन्मूलन प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत जो बेड नेट्स हैं, मच्छरदानी है, और मच्छरदानी में भी ऐसी जिसमें कीट जनक पदार्थ जो है वो रखा रहता है, लगा रहता है, इसको हम लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स बोलते हैं, उसके द्वारा मलेरिया की काफ़ी कमी आई है। लेकिन जो आपका मुख्य प्रश्न है कि जानलेवा ये हो सकती है यदि जो है वो समय पर दवाई जो है वो ना ली जाए।
1: तो
0: इसी तरह से डेंगू में भी जानलेवा हो सकता है। बहुत कम केसेस में इस तरह के जो है वो लक्षण होते हैं, और चिकनगुनिया तो नहीं जो है
1: कम
0: वो
1: है,
0: बहुत
1: एक
0: कम
1: मोटे
0: होता
1: आंकड़े
0: है।
1: के तौर पर अगर देखा जाए तो एक एक से लेकर के 3% तक, जी ये डिपेंड करता है कई सारे चीज में, कौन से स्पीसीज में है, तो मलेरिया और डेंगू जो हो है वो जानलेवा हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर धारीवाल सर ने भी कहा, इसके लिए जरूरी है अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली रिकॉग्निशन, यानी जल्द से जल्द इसे पहचाने और उपयुक्त इलाज इसका करें। तो क्या जो नियमित रक्त जांच होती है उससे शुरुआत में पता चल जाएगा
0: जी हाँ
1: संक्रमण का?
0: जी हाँ, ये जैसे मूल तौर पे डेंगू और मलेरिया की बात करें तो दोनों में खून के जांच के द्वारा इसका पता चल सकता है। किस दिन बुखार के किस दिन कौन सी जांच कराई जाए, यह जांच अलग अलग होता है, तो उसके अनुसार हमें पता चल सकता है। और अब तो कई तरह के रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि यह जिसकी कि सेंसिटिविटी जो है 80-90% तक ऐसा रहता है, या इससे भी ज़्यादा कई केसेस में होता है, जिसमें कि हम लोग बफ़ीकोट और जो अगर उसे अगर इसे माइक्रोस्कोप के अंदर में थिक एंड थिन स्मियर के द्वारा देखते हैं, तो ये सारी जांच बड़े प्रामाणिक हैं और बिल्कुल आसानी से आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। तो बारिश के मौसम के बाद जब कभी भी आपको बुखार और उसके लक्षण, जिसकी चर्चा हम लोग कार्यक्रम में आगे करेंगे, अगर आपको वैसा हो तो आप नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपने डॉक्टर की सलाह पर ही आप उपयुक्त जांच करवाएं, और जांच के अनुसार जो उसका उपयुक्त इलाज है वो अगर आप करते हैं, तो इसमें जो हम लोग जो मॉर्बिडिटी यानी आपके शरीर को होने वाले नुकसान को और जान को होने वाले खतरे को बिल्कुल शून्य के बराबर कर सकते हैं।
1: विपिन
0: अभी
1: है जी,
0: एक योगेश जी का एक प्रश्न और था
1: जी
0: कि
1: जी
0: हमारा नागरिक होने के नाते क्या कर्तव्य है इन बीमारियों से बचने का। तो उसमें एक संदेश मैं देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के द्वारा कि सप्ताह में एक दिन, ये जो आजकल का मौसम चल रहा है मानसून का, पानी जो है वो इकट्ठा ना होने दें। हफ्ते में एक बार, चाहे जो भी आपको ठीक लगे, वो नागरिक जो है वो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से डिसाइड करके, और घर के आसपास जो डेंगू का मच्छर होता है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जो है वो जा सकता, केवल मीटर्स में ही उसकी जो है वो फ्लाइट रेंज होती है, इसको फ्लाइट रेंज बोलते हैं हम। तो घर और घर के आसपास यदि जो है वो हम हफ्ते में एक बार एक नियम बना लें कि परिवार के लोग निकलें और जो है वो ये देखें कि कहीं कोई कंटेनर तो नहीं पड़ा रह गया, कोई बॉटल तो नहीं पड़ी हुई है, कोई प्लास्टिक का कप तो नहीं पड़ा है, कोई प्लास्टिक का सामान तो नहीं पड़ा है, छत पर कोई ट्यूब वगैरह तो
1: टायर
0: नहीं पड़ी है, टायर वगैरह तो नहीं पड़ा है, उसको जो है वो खाली कर दें,
1: और कूलर की
0: और
1: सफाई भी बहुत
0: कूलर
1: जरूरी
0: की
1: है।
0: सफाई में उसमें रगड़ना जरूरी है,
1: सिर्फ पानी सुखाना ही नहीं, रगड़ना भी जरूरी
0: रगड़ना
1: है।
0: जरूरी है। उसके पीछे साइंस ये है कि अंडा जो है वो चिपका रह जाता है दीवार से, और इसमें मच्छरों के जो अंडे होते हैं उसके द्वारा भी एक से दूसरे मच्छर को भी बीमारी जो है वो जा सकती है, जिसको हम ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये एक संदेश
1: जी विपिन है सागर मध्य प्रदेश से।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते विपिन जी।
2: मेरा सवाल ये था कि डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी जो तीनों बीमारियां हैं, क्या इनका होने का कारण एकमात्र मच्छर ही होता है या फिर कोई अन्य कारण से भी ये बीमारियां हो सकती हैं, या फिर किसी को बीमारी हुई है तो फिर मच्छर काटने से ही होती है? थैंक यू।
0: देखिए, विज्ञान के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो डेंगू और चिकनगुनिया ये एक वायरस की ये के द्वारा ये होता है, और मलेरिया जो है एक पारासाइट की वजह से होता है। मच्छर सिर्फ इसे एक जगह से दूसरे जगह फैलाते हैं, तो ये ट्रांसमिशन कराते हैं, और मच्छर काटने की वजह से यह मूल तौर पर होता है।
1: देश दीप दा

0: से हमारे साथ अब ये है केंद्रापाड़ा ओडिशा से। जी
1: नमस्ते जी,
0: नमस्ते नमस्ते
1: नमस्ते
0: जी जी आप अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं।
1: जी, मेरा सवाल है, वेक्टर जनित रोगों का कारण क्या है?
2: देखिए,
0: आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो
3: कार्यक्रम के शुरू में हम लोगों ने इसके संबंध
0: हम
3: में
0: अभी तक यही चर्चा
3: की।
0: कर रहे हैं, तो फिर भी संक्षेप में एक बार फिर से बता दीजिए।
2: देशदीप जी, जो वेक्टर एक शब्द है जो हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, बाकी ये जो है वो जो आर्थ्रोपोड्स या कीट होते हैं जिसमें मच्छर आता है, मक्खी आती है, प्लेग का जैसे पिस्सू जो है वो जिसको ये कहा जाता है, जो इसके ऊपर रहता है, चूहे के ऊपर रहता है, और स्क्रब टाइफस का एक माइट्स होता है, छोटा छोटे जो है वो कीटाणु होते हैं, उनसे होने वाले रोगों को वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहा जाता है।
0: अमित उपाध्याय हैं फोन लाइन पर सासाराम बिहार से। अमित जी क्या कहना चाहते हैं आप?
4: जी मैं अमित उपाध्याय बोल रहा हूँ सासाराम बिहार से। मैं ये मेरा ये सवाल था कि हर एक साल हम लोग देखते हैं कि हर एक जगह बाढ़ आता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हमेशा मच्छर का प्रकोप ज्यादा रहता है, और वैसे भी जो छोटे मोटे जो बरसात के दिनों में और भी जगह होता है, तो हम लोग इसमें कुछ नए नए इतना टेक्नोलॉजी हम लोग अपडेट हो गया है, चाहे बहुत सारा हम लोग उपग्रह वैसा छोड़ते हैं, तो कुछ हम लोग ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं क्या कुछ ठोस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि इसमें कुछ ठोस हम लोग मच्छर को लेकर एक ऐसा कुछ बना दिया जाए ताकि उसके उसको कुछ मारा जा सके, या कुछ वैसा कुछ दवाई या प्रयोग करके ताकि उसको कुछ मतलब परमानेंटली कुछ सलूशन हो जाए, खासकर बरसात के मौसम में। चार पांच
3: अमित जी, आपका विचार बहुत उत्तम है। शायद अगले कुछ वर्षों में या फिर अगले कुछ दशकों में इस संबंध में भी कुछ नई चीज़ें जो बायोटेक्नोलॉजी इसके माध्यम से हो सकता है, लेकिन तब तक के लिए जैसा कि कार्यक्रम के दरमिया में डॉक्टर धारीवाल वाल साहब ने आपको बताया है कि सप्ताह में एक बार अपने आसपास 1 किलोमीटर तक, 500 मीटर तक आप जाएं, जहां कहीं भी जल जमाव की समस्या हो तो उसको आप ठीक करें, आसपास सफाई रखें। वर्तमान समय में यह सबसे उचित और कारगर उपाय है। और पोस्ट जो बरसात के समय में जो है वो पर्सनल प्रोटेक्शन करें, यानी कि पूरे बाजू वाले ये कपड़े पहने, घर के बाहर जब कभी भी ये निकले तो मॉस्किटो रिपेलेंट लें, और जिन क्षेत्रों में मच्छरों का ज़्यादा प्रकोप है वहाँ पर आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। अब तो इंसेक्टिसाइड से जो अप्लाइड जो ये मॉस्किटो नेट रहता है, जो मच्छरदानी रहता है, उसका प्रयोग करें। इन सभी के प्रयोग के माध्यम से हम लोग मच्छर के काटे जाने के कारण जो कोई भी बीमारी होता है उसकी संख्या में को नियंत्रित कर सकते हैं।
0: ये बात ये भी कर रहे थे कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि वहाँ सरकार कुछ करे मच्छरों से बचाव के लिए, क्योंकि छोटे स्केल पर तो लोग कर सकते हैं लेकिन बड़े स्केल पर तो सहयोग चाहिए।
2: नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, और इसमें अमित जी का जो कहना है बाढ़ वाला, तो उसमें एक थोड़ा सा मैं साइंटिफिक फैक्ट्स रख दूं सामने कि जब बाढ़ आती है तो ये जितने ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, तो शुरू में तो ये मच्छर जनित रोग जो हैं वो कम होते हैं बाढ़ वाले में, लेकिन उसके बाद जब पानी रिसीड कर जाता है, हाँ, और पानी जब इकट्ठा हो जाता है, और खास करके छोटे छोटे पोखर जो बन जाते हैं,
0: जो रुक जाता है पानी
2: उसमें यदि 7 दिन से ज्यादा का होगा तो उसमें मच्छर होगा, और फिर उसका एक अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है
0: 7 डेज,
2: तो लगभग लगभग ये 7 डेज का उसका एडल्ट निकलने का टाइम, और उसको इन्फेक्ट होने का टाइम, और उसके बाद जो है वो व्यक्ति को वो काटेगा तब जो है वो, तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से पूरी जो है वो इसमें विज्ञान की तरफ जो सैटेलाइट की बात की इन्होंने, तो वो सैटेलाइट से वो एरिया इंगित कर लिए जाते हैं, और उसमें फिर विशेष खास करके इंसेक्टिसाइड्स का जो है वो स्प्रे वगैरह किया जाता है, जैसे पहले DDT का होता था, आजकल DDT क्योंकि बैन हो गई है, और उसकी जगह दूसरे केमिकल जो सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप के वो हैं उनका स्प्रे होता है, और उसका प्रभाव काफी समय के लिए रहता है, तो सरकार की तरफ से ये सुविधा की जाती है।
0: हमारे अगले श्रोता हैं चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से। जी चौधरी जी, आप जी अपना सवाल पूछिए।

0: जी आदरणीय आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये डेंगू की बीमारी है, ये नर के काटने से फैलती है या मादा के से, और इसके लक्षण क्या है जब ये काट लेता है मच्छर?
2: डेंगू के लक्षण तो हम बता ही चुके हैं।
3: डेंगू के लक्षण ये मादा मच्छर के काटने की वजह से होता है। तेज बुखार होना, शरीर में दर्द होना, आंखों के पीछे में दर्द होना, ये इसके प्रमुख लक्षण है।
2: डेंगू के प्रिवेंशन के लिए ड्राई डे का जो कॉन्सेप्ट है, जो आप जिसके बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा और बताइए।
4: देखिए, इसमें इसके पीछे जो विज्ञान है वो ये है कि जो मच्छर का लाइफ साइकिल है वो यदि पकड़े अपन एडल्ट यदि पकड़ते हैं तो एडल्ट अंडे देता है और वो पानी में देता है, वो लार्वा में कन्वर्ट होता है और फिर वो लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होता है और प्यूपा से वो इमर्ज होकर के फिर एडल्ट होता है जो काटता है। तो ये सारी प्रक्रिया में अंडे से लेकर के और एडल्ट बनने तक लगभग 7 दिन का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि मच्छर ने आज अंडा दिया और वो एडल्ट बन जाएगा। तो इसलिए ये 7 दिन का कंसेप्ट आया है कि यदि पानी आपका 7 दिन से ज़्यादा खड़ा रहा है किसी भी जगह पर, चाहे वो आजकल जैसे प्लास्टिक ये चाय के कप्स वगैरह जो है वो मैं देखता हूँ जगह जगह जो है वो छोड़ देते हैं और उसका फिर कलेक्शन नहीं होता तो बारिश हो जाती है, तो उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसमें खास करके ये डेंगू के जो मच्छर हैं, एडीज मॉस्किटो जिसको बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटोज, वो जो है वो, तो इसलिए वो 7 दिन वाला कंसेप्ट जो है वो आया है।
2: हमारे अगले श्रोता है राकेश शिमला से।
5: जी नमस्कार, मैं राकेश माकरव को छाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
2: जी
5: जी, तो मेरा सवाल ये है कि जैसे डेंगू मलेरिया जो है, अगर आप बच्चों को काटा है, क्योंकि छोटे बच्चों को ज्यादा बुखार से नहीं कर पाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए ताकि बच्चों को अगर मच्छर से बचाना हो?
4: राकेश जी, बच्चों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए ये जो है वो एक तरीका ये होता है कि दिन के समय में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि डेंगू का जो मच्छर है वो दिन के समय काटता है, तो छोटी जो मच्छरदानी आती है उसमें बच्चे को सुलाएं और बच्चे को कपड़े ऐसे पहनाएं कि उसमें मच्छर के खुला शरीर जो है वो ना रहे। और तीसरी बात ये कि जो है वो जालियों का, घरों में जालियों खिड़कियाँ खुली नहीं होनी चाहिए, और ख़ास करके शिमला के क्योंकि आप हैं और क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का जो विषय चल रहा है उसकी वजह से भी ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश अब जो है वो अछूता है।
2: कई पहाड़ी जगहों पर भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, नागालैंड में भी है।
4: बिल्कुल।
2: पीयूष जी, ये बताइए कि डेंगू को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो क्या क्या है? जैसे प्लेटलेट्स को लेकर ही काफी बात लिखी जाती है कि इसे बढ़ाने के लिए घरेलू उपचार करो, कितना सच है, कितना कारगर है ये?
3: देखिए, डेंगू को लेकर के 3-4 मुख्य भ्रांतियां हैं। सबसे पहले ये कि डेंगू के इलाज में सिर्फ प्लेटलेट ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं रहता। किसी भी मरीज को या डेंगू के सीजन में हर कोई प्लेटलेट को लेकर के बड़ा बहुत ज़्यादा पैनिकी होता है।
2: रोज की संख्या देखी जाती है,
3: तो सबसे पहले प्लेटलेट की संख्या महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसकी संख्या बुखार ठीक होने पर, यानी 5 से 7 दिन या उसके बाद में यह महत्वपूर्ण रहता है। शुरुआती समय में बुखार का नियंत्रण करना यह ज़्यादा जरूरी रहता है और इस दौरान हाइड्रेशन का एप्रोप्रिएट होना यह ज़्यादा जरूरी रहता है। और इस दौरान अगर ब्लड की जांच भी कराई जाती है तो ब्लड में जो है पैक्ड सेल वैल्यू यानी हिमेटोक्रिट की जो वैल्यू देखी जाती है वह महत्वपूर्ण रहता है। तो सबसे पहले जब कभी भी डेंगू या इसकी संभावना अगर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल नाम की ही दवा लेनी चाहिए। डिक्लोफिनैक या निमोसिलाइड या ऐसे दूसरी कोई भी और दवाई जो लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बाद में प्लेटलेट की संख्या कम होती है। पहली बात, शुरू के समय में जब बुखार बहुत तेज हो तो पैरासीटामोल भी एक डेफिनेट डोज तक दिया जा सकता है,
2: जैसे
3: कि 500 से लेकर के 1 ग्राम, एक दिन में मैक्सिमम 3 ग्राम तक एडल्ट आदमी को दिया जा सकता है। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ ये रेडियो पर सुन करके लोग खुद का इलाज ना करें, ये सिर्फ एक बताने के लिए डॉक्टर के पास जा करके करें। और अगर बुखार उस समय ठीक ना हो तो फिर वो टेपिड वाटर से स्पॉन्जिंग करें, नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ कि प्लेटलेट की संख्या को लेकर

0: के बहुत ज्यादा ना घबराएं। ऑल्दो 1 लाख से कम की संख्या को हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, लेकिन सीवियर टाइप ऑफ ब्लीडिंग की संख्या, ये ब्लीडिंग की संभावना बढ़ने के लिए 10,000 या उससे कम के लेवल पर ही प्रोफाइलेक्टिक प्लेटलेट को चढ़ाने की ये के इंडिकेशन बनते हैं।
1: 10,000 से ऊपर हो तो जरूरत
0: तो
1: नहीं
0: जरूरत
1: चढ़ाने
0: बिल्कुल
1: की।
0: भी नहीं। इनफैक्ट हॉस्पिटल के में सेटअप में अगर आपको कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो वो और ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 ये बात हो गया। नंबर 3, किसी भी भोज्य पदार्थ के खाने से, जैसे लोगों के मन में ऐसा रहता है कि बकरी का दूध या फिर
1: या
0: पपीते
1: पपीते
0: का
1: के पत्ते का रस लेते
0: पत्ते या
1: हैं।
0: छाला, ये पीने की वजह से, पीने से जो है प्लेटलेट की संख्या बढ़ती है। मैं इस बात को बिल्कुल पुरजोर ढंग से कहना चाहूँगा कि यह एक भ्रम है। किसी भी तरह के भोजन के पदार्थ को, चाहे वो कोई तरह का फल हो, कई लोग कीवी हो गया या पपीता हो गया, ये सब के खाने से किसी भी तरह से नहीं होता। पपीते के छाले को पीने के वजह से जो है कई बार गैस्ट्राइटिस या फिर लीवर इंजाइम के बढ़ने की या हल्के तरह से लीवर में सूजन की आने की संभावना बढ़ जाती है। तो लोगों में मैं ये इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन में बताना चाहूँगा कि यह
1: जी
0: बिलीफ सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में लोग एक दूसरे को जो है वो शिक्षा जो है
1: हर आदमी डॉक्टर बना
0: डॉक्टर
1: देता
0: बनने,
1: है।
0: तो यह नुकसान ज़्यादा करता है। तो जब कभी भी डेंगू होने, डेंगू में 95% बिल्कुल खुद ब खुद ठीक हो जाता है। सिर्फ 3 से 4% लोग हैं जिनको कि अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जिसमें कि डेंगू के जो सीवियर साइन जो होते हैं वो अगर उसको आप देखते रहें, आप अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के संपर्क में रहें,
1: जी
0: तो ये आपका ठीक रहेगा।
1: विजय कुमार कोल्हापुर से हमारे एक और श्रोता। विजय जी
2: हाँ जी, कनक दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते,
2: विशेषज्ञों को नमस्कार।
0: नमस्ते जी।
2: हाँ, विजय कुमार महालिंगा, विजय कुमार स्वामी गांव बस्तवा तहसील शहर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी
1: जी।
2: मेरा सवाल यह है कि मच्छर कट गए तो, समझो मच्छर कटे तो कौन सी क्या सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए?
0: अगर मच्छर काट ले तो फिर उसके बाद उस जगह को हल्का सा रब कर दें और बस, ताकि वो आपको जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए। मच्छर काटने से बचने के लिए ये आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। जी,
1: मच्छर काटने के बाद बीमारी के लक्षण, रोग बुखार हो जाए, दर्द हो,
0: तब वो
1: उल्टियां
0: तुरंत
1: हो,
0: काटने।
1: तब आप डॉक्टर के पास
0: जी
1: जरूर
0: जी
1: जाए।
0: जी
1: धारीवाल जी, 21 जुलाई को सरकार ने डेंगू की नई वैक्सीन क्यूडेंगा को स्वीकृति दे दी है। कहा जा रहा है कि डेंगू नियंत्रण उपायों में ये मददगार साबित होगा। इस बारे में आप हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन करें।
3: ये बिल्कुल आपने ठीक जानकारी दी कि भारत सरकार ने ये क्यूडेंगा नाम की एक वैक्सीन है जो डेवलप हुई है और इसका लाइसेंस भारत सरकार ने इशू कर दिया है। और ये एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो इसकी टेस्टिंग होती है, और पहले भी ये बात चली थी और डेंगू की वैक्सीन जो है वो आई थी, लेकिन भारत सरकार ने उसको लाइसेंस नहीं जो है वो किया था। इस बार वाली जो वैक्सीन आई है ये क्यूडेंगा, ये अभी लाइसेंस हुई है मार्केटिंग करने के लिए। अभी इसका उपयोग पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में, जैसे और दूसरी टीके लगते हैं बच्चों को, चाहे वो DPT का हो, पोलियो का हो, या आजकल पेंटावेलेंट जो है वो दिया जा रहा है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जा रही है, तो ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स मतलब सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं। अभी ये क्यूडेंगा वैक्सीन उस स्थिति में नहीं है।
1: भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं,
3: भविष्य में इस पर जो अपना भारत सरकार का एक नियम है उसके द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा इसकी जो है वो कि जब मासेस में यूज होगी
1: जी,
3: मतलब इसमें आपके प्रोग्राम के द्वारा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो डेंगू बुखार होता है वो 4 तरह के है वायरल, लेकिन 4 तरह के अलग अलग इसके वायरसेस होते हैं, जिसको डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4 ऐसा नाम जो है वो दिया गया है। डेंगू 1 और डेंगू 3 माइल्ड होता है
1: जी,
3: और डेंगू 2 और डेंगू 4 ये सीवियर फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसमें जो कहा जाता है कि ब्लीडिंग की जो है वो टेंडेंसी हो सकती है। तो वो जो है वो आपस में कैसी रिएक्ट करेंगे
1: जी,
3: तो वो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में जब यूज होंगे मासेस में तब उसका।
1: पीयूष जी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो म्यूनिसिपल एजेंसीज और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं मच्छरों को दूर रखने के लिए, संक्षेप में?
0: जी, इस ये इन बीमारियों के नियंत्रण की जिम्मेदारी व्यक्ति, हर व्यक्ति और

0: RWA की है, अपने आसपास जहां कहीं भी पानी अगर जमा हो रहा हो तो सप्ताह में एक दिन सभी लोग बाहर निकलें और उसके बाद ये करें। यह बीमारी जो है वो ठहरे हुए पानी में ये से फैलता है। अगर ठहरे हुए पानी में आसपास अगर सफाई रखेंगे तो सरकार को और हम सभी स्वास्थ्यकर्मी को नियंत्रण करने में काफी मदद मिलेगी।
1: अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है eirnsgtalks@gmail.com। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
3: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे, थोड़ा सा करिए इंतज़ार।

श्रोताओं, कार्यक्रम संदेशे आते हैं में आप सभी का स्वागत है। चलिए लेते हैं कार्यक्रम का पहला फरमाइश जो हमें डॉलीगंज से सपना और मोनिका ने भेजा है। ये सुनना चाहते हैं फिल्म मोहब्बते का ये गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के तथा संगीत जतिन ललित का है। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गाना।

लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

अगला गीत के लिए फरमाइश हमने भेजा है टेरलाबाद से ज्योति और मानसिनी। ये सुनना चाहते हैं मुकेश का गाया फिल्म पत्थर के सनम का ये गाना। गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की तथा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

साउथ पॉइंट से मीना और मोहन सुनना चाहते हैं फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। गीत रचना आनंद बख्शी की तथा संगीत आर डी बर्मन का है।

महबूब की मेहंदी। इस फिल्म के गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी की गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और फरमाइश करने वाले श्रोता है हावड़ीपुर से राहुल और रोहन।

पुरम केंद्र है। मौसम, मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं के लिए कोई सूचना नहीं है। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार के तटीय इलाकों में वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर हो सकती है, जिस कारण मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:31 और 15 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 की श्रावण माह की छठवीं तिथि तदनुसार 28 जुलाई सन 2026।